0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना हाजिर हो जाते हैं सोमवार से शनिवार कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। तो आज भी श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे ही एक नए विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है वो हमारे बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे अच्छी आदतों को लेकर। तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों हमारी आपसे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए शुरुआत में पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारा आपसे बातचीत के लिए एक नया विषय रहने वाला है, अच्छी आदतों को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो उन्हें बचपन से ही अच्छी आदतें सिखानी बहुत जरूरी होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक रेडियो नाटक के माध्यम से हम यही समझेंगे श्रोता साथियों कि हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखा सकते हैं और अच्छी आदतों से हमारे बच्चे किस प्रकार से नई नई चीजों को सीखते हैं और उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें हम आगे कार्यक्रम में जानेंगे। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं एक प्यारा सा रेडियो नाटक जिसमें दो सहेलियां बात कर रही है, रीना और टीना।
1: वाह कितना सुंदर मौसम है, सुबह सुबह उठकर टहलने का मजा ही कुछ और है। थोड़ा व्यायाम कर लेती हूँ फिर पढ़ाई भी करूंगी।
2: अरे रीना तुम फिर सुबह इतनी जल्दी उठ गई, मुझे तो अभी और सोना है।
1: टीना सूरज निकल आया है, सुबह जल्दी उठना भी अच्छी आदत है।
2: लेकिन मुझे तो देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है।
1: पर क्या तुम्हें पता है इससे दिन का काफी समय निकल जाता है। सुबह का समय पढ़ाई और नई चीजें सीखने का सबसे अच्छा समय होता है।
2: मुझे तो लगता है कि एक घंटा और सो लूं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आती है।
1: टीना अगर यही एक घंटा अच्छे काम में लग जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है।
2: अरे मेरी हिंदी की कॉपी कहाँ गई, मेरा पेन भी नहीं मिल रहा।
1: टीना तुमने सामान सही जगह पर रखा था?
2: नहीं कल तो मैंने जल्दी जल्दी में कहीं रख दिया था।
1: देखो मैं रोज रात को अपना बैग तैयार कर लेती हूँ, इसलिए सुबह कोई परेशानी ही नहीं होती।
2: सच में मुझे रोज इसी बात की परेशानी होती है, मैं हमेशा जल्दी जल्दी में अपने सामान इधर उधर रख कर भूल जाती हूँ और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है।
1: देखा टीना अच्छी आदतें हमें परेशानी से बचाती हैं और हमारा समय भी बचाती हैं।
2: सही कह रही हो तुम। रीना तुम्हें हर सवाल का जवाब कैसे याद रहता है?
1: क्योंकि मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ।
2: अच्छा मुझसे तो होती ही नहीं है पढ़ाई, मैं तो परीक्षा आने पर ही पढ़ती हूँ।
1: हाँ टीना यही कारण है रोज थोड़ा पढ़ना आसान होता है, जबकि आखिरी समय में सब याद करना कितना मुश्किल लगता है।
2: सही कह रही हो तुम, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। लगता है मुझे अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। देखो ना तुम सुबह भी जल्दी उठ जाती हो, ये भी तुम्हारी अच्छी आदत है। तुम समय पर स्कूल के लिए तैयार होकर अपने सामान भी व्यवस्थित तरीके से ले आती हो और मैं हमेशा इन सारी चीजों को लेकर परेशान होती हूँ। रीना आज लंच में क्या लाई हो तुम?
1: मैं तो आलू की सब्जी और पराठे लाई हूँ।
2: अच्छा मैं तो आज फिर से चिप्स लाई हूँ।
1: ओ
2: लेकिन तुम ये आलू और पराठा कैसे खा लेती हो? चिप्स खाने में कितना मजा आता है।
1: टीना ये चिप्स वगैरह खाना कभी कभी ठीक होता है लेकिन रोज नहीं, हमारे शरीर को ताकत देने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है।
2: हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मेरी मम्मी भी मुझे अक्सर अच्छे खाने के लिए बोलती रहती है लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, मैं हमेशा चिप्स और बाहर की चीजें ही खाती हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों से अब समझ में आ रहा है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन जरूरी होता है।
1: टीना चलो कबड्डी खेलते हैं।
2: नहीं नहीं मैं तो अभी मोबाइल चलाऊंगी।
1: टीना तुम तो दिन भर मोबाइल ही देखती रहती हो,
2: उसमें मुझे बहुत मजा आता है।
1: लेकिन टीना मैदान में खेलने से हमारा शरीर है वो मजबूत होता है, नए दोस्त बनते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
2: लेकिन मुझे तो दौड़ने में बहुत आलस आता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ।
1: टीना शुरुआत में सब मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता।
2: रीना, मैंने तुम्हारी बात मानना शुरू कर दी है।
1: क्या सच में टीना? तो फिर तुमने क्या क्या बदला?
2: देखो, जैसा कि आज तुम बोल रही हो कि अपन कबड्डी खेले, तो मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने आ रही हूँ। और अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, अपना बैग व्यवस्थित रखूंगी, रोज पढ़ाई भी करूंगी और जंक फूड कम खाऊंगी।
1: बहुत बढ़िया। अब कैसा महसूस हो रहा है?
2: पहले से कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अगर तुम्हारी बात मानूंगी तो मुझे लगता है कि मेरा मन जो है वो हल्का हो जाएगा और मैं फिर से नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन जी पाऊंगी। दोस्तों, मैंने अपनी जो फ्रेंड है रीना, उससे सीखा कि आलस, समय की बर्बादी और लापरवाही हमें पीछे ले जाती है।
1: और समय की पाबंदी, नियमित पढ़ाई और स्वस्थ भोजन, साथ ही साफ सफाई और खेल कूद हमें आगे बढ़ाते हैं।
2: कहते हैं ना रीना, कि अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से हमारी पहचान जरूर बन जाती है।
1: इसलिए याद रखिए कि आज की अच्छी आदतें कल का उज्जवल भविष्य बनाती हैं।
2: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने रीना और टीना के संवाद को सुना, और जैसा कि बहुत ही प्यारा सा रेडियो नाटक था, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि उनके जीवन में अच्छी आदतों का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे बच्चे जंक फूड के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता, लेकिन इस रेडियो नाटक के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि हमें अपने बच्चों को घर के खाने के फायदों के बारे में बताना चाहिए और साथ ही बाहर के जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए। तो जैसा कि आज इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं साथियों, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त तो होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। साथियों, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों। साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: भाइयों बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, तनाव नहीं सही रणनीति से मिलेगी सफलता। कशिश, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर जीवन की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर जगह आगे बढ़ने की होड़ दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: इस होड़ में अक्सर इंसान ये मान बैठता है कि जितना अधिक तनाव होगा उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। तनाव न तो सफलता की गारंटी है और न ही परिश्रम का प्रमाण। सफलता का रास्ता श्रोताओं तनाव से होकर नहीं बल्कि सही रणनीति, स्पष्ट सोच और संतुलित प्रयासों से होकर गुजरता है। आज के इस कार्यक्रम से हम यही जानने वाले हैं कि तनाव नहीं सही रणनीति से ही सच्ची सफलता हमें मिलती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि तनाव से नहीं सही रणनीति से मिलती है सफलता विषय पर। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी बताया था कि आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में सफलता की इच्छा हर कोई व्यक्ति अपने मन में रखता है।
1: जी हाँ,
0: चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य होता साथी हो, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अधिक तनाव लेने से ही सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों तनाव व्यक्ति की सोच को संकुचित करता है जबकि सही रणनीति उसे स्पष्ट दिशा देती है।
1: जी हाँ,
0: देखा जाए तो वास्तव में सफलता का रास्ता तनाव से नहीं बल्कि सुविचारित रणनीति से होकर ही गुजरता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि तनाव मन की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति भविष्य की चिंता, असफलता का डर या अपेक्षाओं के बोझ से दबा हुआ महसूस करता है। श्रोताओं, हम देखते हैं कि जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते हैं, समय प्रबंधन कमजोर होता है या स्वयं पर अत्यधिक दबाव बनाया जाता है, तब तनाव जन्म लेता है। समाज की तुलना, परिवार की उम्मीदें और स्वयं से की गई अव्यवहारिक अपेक्षाएं भी तनाव को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में लोग परिणाम पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कशिश, की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। यही भूल तनाव का सबसे बड़ा कारण बनती है।
0: जी हाँ,
1: जब इंसान केवल क्या पाना है पर सोचता है और कैसे पाना है पर नहीं, तब तनाव स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी श्रोता साथियों, अगर बात करें तो तनाव व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। अत्यधिक तनाव में व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर भी घबरा जाता है और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि कई बार तनाव के कारण सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आत्मविश्वास व्यक्ति का डगमगा जाता है, कार्य क्षमता इससे प्रभावित होती है और गलत फैसलों की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में साथियों सफलता जो है वो दूर होती चली जाती है। हम देखते हैं कि रणनीति का मतलब होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहले से ही सोच समझ कर बनाई गई योजना से। जैसे कि रणनीति व्यक्ति को यह स्पष्ट करती है जागृति जी कि उसे करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है।
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छी रणनीति व्यक्ति को तनाव से तो बचाती ही है क्योंकि उसे हर कदम पर स्पष्टता मिलती रहती है। साथियों, हम देखते हैं कि जब रास्ता साफ होता है तो डर और भ्रम अपने आप कम हो जाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि एक आम धारणा ये है कि जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है वो गंभीर है और वही सफल होगा, लेकिन इतिहास और व्यवहारिक जीवन हमें कुछ और ही सिखाते हैं श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: अत्यधिक तनाव व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में होता है जिसमें दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तनाव व्यक्ति की रचनात्मकता, एकाग्रता और आत्मविश्वास को कमजोर करता है श्रोताओं, और जो मन शांत नहीं वह सही दिशा में सोच नहीं सकता।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में सफलता की राह और भी कठिन हो जाती है। इसीलिए साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि ये समझना बहुत जरूरी है कि तनाव मेहनत का पर्याय नहीं है बल्कि ये गलत दिशा में किए गए प्रयासों का संकेत हो सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि तनाव से नहीं सही रणनीति से हम अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, तो ये बातें ऐसे आगे और भी जरूर जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।
2: टूटा टूटा

0: आएगा।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, तनाव नहीं सही रणनीति से मिलेगी सफलता, और कुछ बातें हमने गीत से पहले करी भी थी। जैसा कि श्रोता साथियों, रणनीति का अर्थ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सोचा समझा व्यवस्थित और व्यवहारिक तरीका है।
2: बिल्कुल,
1: सही रणनीति वो होती है जो व्यक्ति की क्षमताओं, संसाधनों और परिस्थितियों के अनुरूप हो। इसमें तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण है। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सही योजना होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। श्रोताओं, जहाँ तनाव व्यक्ति को जकड़ देता है, वहीं रणनीति उसे दिशा देती है। तनाव अधिकतर भावनाओं से जुड़ा होता है कशिश, डर, चिंता, असुरक्षा। इसके विपरीत जो रणनीति होती है वो तर्क और विवेक पर आधारित होती है।
2: बिल्कुल।
1: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जब व्यक्ति भावनात्मक दबाव में काम करता है तो छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता है, लेकिन रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर सफलताओं को सीखने का अवसर मानता है।
2: बिल्कुल,
1: रणनीति व्यक्ति को समझने में मदद करती है कशिश कि हर लक्ष्य तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजें समय मांगती है। ये समझ तनाव को कम करती है और धैर्य को बढ़ाती है।
2: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, अगर बात करें तो देखते हैं कि सही रणनीति बनाने के लिए कुछ बातें हमें समझने की जरूरत होती है, जैसे कि लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण होना जरूरी है, साथ ही समय का सही प्रबंधन भी जरूरी है, और विकल्पों पर विचार करना भी जरूरी है जागृति जी। क्योंकि जब व्यक्ति इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है तो उसे तनाव लेने की आवश्यकता बनी ही नहीं रहती। दोस्तों, हम देखते हैं कि तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी भरा हो सकता है, जबकि रणनीति धैर्य और विवेक से बनती है। हम देखते हैं जागृति जी कि जो व्यक्ति हर समस्या पर शांत रहकर सोचता है वह परिस्थिति को अवसर में बदल देता है।
1: जी हाँ।
2: और वहीं तनावग्रस्त व्यक्ति समस्या को और भी बड़ा बना लेता है। साथियों, अगर बात करें कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में रणनीति की क्या भूमिका होती है, तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो योजनाबद्ध अध्ययन से बिना घबराए अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथियों, वहीं नौकरी में काम की प्राथमिकता तय करने से दबाव कम होता है। व्यवसाय में अगर बात करें तो सही रणनीति नुकसान को भी सीख में बदल देती है।
1: जी हाँ।
2: और वहीं व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को समझदारी से संभालने में रणनीति हमारी सहायक होती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल,
2: एक तरीके से देखा जाए जागृति जी तो यह हर क्षेत्र में स्पष्ट हो जाता है कि रणनीति व्यक्ति को संतुलित रखती है जबकि तनाव उसे कमजोर करता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि सही रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समय प्रबंधन है। समय को लेकर लापरवाही तनाव को जन्म देती है। जब काम अधूरा रह जाता है और समय निकल जाता है तब घबराहट बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाकर चलता है उसे आखिरी समय की हड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ता।
2: बिल्कुल,
1: समय प्रबंधन ये सिखाता है कशिश कि हर काम का सही समय होता है और सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। यही सोच तनाव को नियंत्रण में रखती है।
2: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने तनाव को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने दिया। उन्होंने परिस्थितियों को समझा है जागृति जी, रणनीति बनाई और धैर्य के साथ आगे भी बढ़े हैं। दोस्तों, उनकी सफलता का रहस्य मेहनत के साथ साथ सही सोच और सही योजना रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि समस्या को बोझ नहीं चुनौती की तरह हमें देखना चाहिए। हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए। असफलता को रणनीति सुधारने का अवसर माने दोस्तों, और आत्मसंयम और धैर्य को अपनी शक्ति बनाकर रखें। क्योंकि जागृति जी, तनाव व्यक्ति को तोड़ता है जबकि रणनीति उसे मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ,
2: सफलता उसी को मिलती है साथियों जो शांत मन से सोचकर सही दिशा में योजनाबद्ध कदम उठाता है। क्योंकि जीवन की हर दौड़ में जीत उसी की होती है जो तनाव नहीं बल्कि रणनीति को अपना साथी बनाए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मानसिक संतुलन सफलता की आधारशिला है। जब मन शांत होता है तभी रणनीति प्रभावी बनती है। ज्ञान, योग, आत्मचिंतन या प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सारी चीजें मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। रणनीतिक सोच तभी विकसित होती है जब व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है।
2: बिल्कुल,
1: शांत मन समस्याओं को चुनौती की तरह देखता है, बोझ की तरह नहीं। श्रोताओं, असफलता को लेकर हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम तनाव में जाएंगे या रणनीति बनाएंगे।
2: जी,
1: यदि असफलता को अंत मान दिया जाए कशिश, तो तनाव निश्चित है, लेकिन यदि उसे सीख का माध्यम माना जाए तो वही असफलता अगली सफलता की नींव बन जाती है।
2: बिल्कुल,
1: रणनीति ये सिखाती है कि हर असफलता ये बताने आती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल नहीं। यही सोच तनाव को आशा में बदल देती है।
2: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताएं तो तनाव से नहीं समझदारी से आगे बढ़िए। क्योंकि सही रणनीति ही सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी है। हम देखते हैं कि जब स्पष्ट प्राथमिकताएं होती हैं जो तनाव को स्वतः ही कम कर देती है, यानी कि जागृति जी, जब व्यक्ति ये तय कर लेता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो अनावश्यक दबाव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। साथ ही रणनीति व्यक्ति को नियंत्रण का एहसास कराती है। साथ ही जब हालात हमारे नियंत्रण में महसूस होते हैं तब मन स्थिर रहता है और निर्णय बेहतर होते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती है साथियों, इसलिए जड़ रणनीति नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाली सोच सफलता दिलाती है।
1: बिल्कुल,
2: हम अगर बात करें तो भावनाओं पर नहीं तथ्यों पर आधारित योजना सफल होती है, क्योंकि भावनात्मक निर्णय अक्सर तनाव बढ़ाते हैं, जबकि तथ्य आधारित रणनीति स्थायित्व लाती है। जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम हमारे श्रोता साथियों से इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमें यही समझना सबसे जरूरी है कि जीवन कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसे घबराहट में पास किया जाए। जीवन एक यात्रा है जिसे समझदारी, धैर्य और सही रणनीति के साथ तय किया जाता है।
2: बिल्कुल,
1: तनाव उस धुएं की तरह है जो हमारी आंखों के सामने छा जाता है और हमें रास्ता दिखना बंद हो जाता है।
2: जी,
1: वहीं रणनीति उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन जल्दी के चक्कर में हम अपने मन पर अनावश्यक दबाव बना लेते हैं। ये दबाव धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है श्रोताओं, और वही तनाव हमारी क्षमताओं को सीमित कर देता है।
2: जी हाँ।
1: हम जितना सोच सकते थे उससे कम सोच पाते हैं, जितना कर सकते थे उससे कम कर पाते हैं। ऐसे में असफलता नहीं बल्कि हमारी जल्दबाजी और अव्यवस्थित सोच हमें पीछे खींच लेती है।
2: बिल्कुल,
1: सही रणनीति हमें ये सिखाती है कि हर लक्ष्य का एक क्रम होता है, हर सपने की एक प्रक्रिया होती है और हर सफलता का अपना समय होता है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तब मन शांत होने लगता है। शांत मन में विचार स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट विचारों से ही मजबूत निर्णय जन्म लेते हैं।
2: बिल्कुल,
1: यही निर्णय आगे चलकर सफलता की नींव बनते हैं कशिश।
2: हाँ।
1: और श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि यह भी याद रखना चाहिए कि तनाव हमें थका देता है लेकिन रणनीति हमें मजबूत बनाती है। इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी जीवन में दबाव महसूस हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं तनाव में उलझ रहा हूँ या रणनीति बना रहा हूँ।
2: बिल्कुल,
1: जिस दिन ये सवाल आपकी आदत बन जाएगा उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा सचमुच शुरू हो जाएगी।
2: जी
1: याद
2: हाँ।
1: रखिए श्रोताओ, सफलता उन कदमों से नहीं मिलती जो डर में उठाए जाते हैं, सफलता उन कदमों से मिलती है जो सोच समझकर सही दिशा में बढ़ाए जाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: तनाव रास्ता रोकता है, रणनीति रास्ता बनाती है, और जो व्यक्ति कशिश रास्ता बनाना सीख लेता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब हम देख भी रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी दोस्त जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाय तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं, यह आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने वाले हैं जो कि हमारे गांव, हमारे समाज और हमारे भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: विषय है स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास। अक्सर अंजलि हम विकास की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और बड़े उद्योग हमें विकास के प्रतीक दिखाई देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, कभी हमने सोचा है कि विकास की सबसे मजबूत नींव हमारे अपने गाँव, अपने खेत और अपने जंगल, अपने जल स्रोत, अपनी स्थानीय प्रतिभाओं में छिपी हुई है।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग ही स्थानीय विकास का सबसे सशक्त मार्ग है। जब गांव अपने संसाधनों के बल पर आगे बढ़ता है अंजलि, तब विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाल बनकर उतरता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि स्थानीय संसाधन की बात करें तो श्रोता साथियों, स्थानीय संसाधन वे साधन है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं या वहाँ के लोगों की कला, ज्ञान और कौशल के रूप में मौजूद होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि भूमि, जल, वन, खनिज, पशुधन, स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक ज्ञान, मानव श्रम और कौशल। यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी क्षेत्र का विकास बाहरी सहायता पर कम निर्भर हो सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विकास की पहली सीढ़ी है अपने संसाधनों को पहचानना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम दूरी की चीजों में तो अवसर खोजते रहते हैं जबकि अवसर हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। किसी गांव की उपजाऊ जमीन, किसी क्षेत्र का जंगल, किसी समुदाय का पारंपरिक ज्ञान या किसी व्यक्ति का हुनर भी एक संसाधन है।
0: जी हाँ,
1: यदि हम जागृति जी अपने संसाधनों को पहचान ले तो हम देखते हैं कि हम कई तरीके से विकास में सहयोग कर सकते हैं। और बहुत सी बार हमारे साथ ये होता है कि हमारे स्थानीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पहचान करना, जिनकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमें उनकी पहचान नहीं होती है तो हम देखते हैं कि हम उन सारी चीजों के लिए कहीं दूर जाते हैं और वहां जाकर हम कई परेशानियां झेलते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम स्थानीय स्तर पर हमारे जो आसपास के संसाधन है उनका क्या उपयोग हो सकता है, किस तरीके से उन्हें काम में लिया जा सकता है, उसकी पहचान करना शुरू करें।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो विकास बहुत अच्छे से गांवों का हो पाता है।
0: जी हाँ अंजलि, एक छोटा सा संवाद है जो हमारे श्रोता साथियों के साथ हम करना चाहेंगे। संवाद में दो पात्र है, जैसे कि रमेश और मोहन। रमेश कहता है कि भाई विकास के लिए तो बड़े उद्योग और बड़ी पूंजी चाहिए। तभी मोहन कहता है कि जरूरी नहीं है, अगर गांव के लोग अपने खेत, पानी, जंगल और हुनर का सही उपयोग करेंगे तो विकास की शुरुआत वहीं से हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तभी अंजलि रमेश कहता है कि मतलब अपने संसाधनों को पहचानना ही पहला कदम है ना। तब मोहन बोलता है बिल्कुल, जो हमारे पास है उसी से आगे बढ़ना ही असली समझदारी है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि स्थानीय विकास का अर्थ केवल भवन निर्माण नहीं है, इसका मतलब है कि क्षेत्र के लोग अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। जब गांव के लोग स्वयं अपने विकास की योजना बनाते हैं, उनमें भागीदारी रखते हैं और उनका लाभ लेते हैं तो वास्तविक विकास होता है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय विकास लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं जो है वो घर पर ही कई अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाती हैं और उनको बाजार में जाकर बेचती हैं, तो उससे वो अपनी आत्मनिर्भरता की ओर एक पहला कदम बढ़ा रही हैं। उसी तरह आज महिलाएं बीज भंडारण करती हैं, सब्जी के लिए पोषणवाड़ी करती हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजों में महिलाओं का रुझान जो है वो बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और इसी तरह जो युवा साथी है वो भी अगर सोचे कि स्थानीय स्तर पर क्या ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से मैं रोजगार प्राप्त कर सकता हूँ, तो इन सारी चीजों को सोचने की हमें जरूरत है, तभी हम देखेंगे कि स्थायी विकास संभव हो पाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम स्थानीय विकास की बात कर रहे हैं तो स्थानीय विकास की भी बहुत सारी चुनौतियां होती है, जैसे कि संसाधनों की सही जानकारियों का अभाव होता है, तकनीक ज्ञान की कमी होती है, बाजार तक पहुंच की समस्याएं हो जाती है, जल और पर्यावरण का क्षरण हो जाता है और युवाओं का पलायन। लेकिन श्रोताओं, यदि समाज, प्रशासन और नागरिक मिलकर काम करे तो इन चुनौतियों का अवसर में बदला जा सकता है। सच्चा स्वराज केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, ये आत्मनिर्भरता, सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना है। जब अंजलि हम अपने गांव, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उनका उपयोग सामूहिक हित के लिए करते हैं, तब सच्चे स्वराज की भावना मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: स्थानीय विकास हमें सिखाता है कि प्रगति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से पैदा होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि स्थानीय स्तर की जो चीजें हैं उन्हें हम बढ़ावा कैसे दें जिससे स्थानीय विकास संभव हो पाए, तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय विकास केवल आर्थिक नहीं होता बल्कि सामाजिक स्थिरता भी प्रदान करता है। यह परिवार को एकजुट रखता है और गांवों की जो चीजें हैं उन्हें बनाए रखता है। आज अगर सभी लोग रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर चले जाएंगे तो जो गांव है उसकी प्रकृति, पर्यावरण और कहीं सारी जो चीजें हैं वो बेरुखी हो जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्थानीय स्तर पर रहकर ही कई ऐसे रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं जिससे हमारे गाँव की जो चीजें हैं वो बरकरार रहे और गांव अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाए।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्थानीय विकास का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे विकास का लाभ सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचता है। जब किसी गांव या क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग वहीं के लोगों के हित में होता है तो रोजगार बढ़ता है, आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर सुधरता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय विकास लोगों में आत्मविश्वास पैदा करता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे ये भावना मजबूत होती है कि विकास बाहर से नहीं आएगा बल्कि हम स्वयं अपने विकास के निर्माता बन सकते हैं। यही भावना आत्मनिर्भरता की नींव है। स्थानीय विकास सामाजिक एकता को भी मजबूत करती है क्योंकि इसमें लोगों की सहभागिता और सामूहिक प्रयास शामिल होते हैं। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आज बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है।
0: जी जी,
1: लाखों युवा रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। यदि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए अंजलि, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हम पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कृषि आधारित उद्योग, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये सब मजबूत बनाते हैं। इससे हमारे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलता है और पलायन की समस्या भी कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार ज्यादा स्थायी और समावेशी होते हैं क्योंकि इनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है। कहा भी गया अंजलि कि स्थानीय रोजगार का अगर विस्तार होगा तभी गाँव का सच्चा उद्धार होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी का सपना था कि गाँव आत्मनिर्भर बने। सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी और जन भागीदारी की भावना है।
1: बिल्कुल,
0: जब गांव अपने संसाधनों का संरक्षण करता है, उनका न्यायपूर्ण उपयोग करता है और विकास के लाभ सभी तक पहुंचाता है तब सच्चे स्वराज की स्थापना होती है। जागृति जी, यदि किसी पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो वह आंधियों का सामना कर सकता है, उसी प्रकार यदि किसी समाज की जड़ें मजबूत हो तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी जड़ें हैं हमारे स्थानीय संसाधन, हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारा श्रम और हमारा ज्ञान, यही हमारी असली ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: विकास की शुरुआत हमेशा अपने आसपास से होती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमें अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने संसाधनों पर विश्वास करना होगा। इसलिए हम सभी को मिलकर संकल्प लेना है कि हम जल बचाएंगे, वनों की रक्षा करेंगे, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे, महिलाओं और युवाओं को अवसर देंगे और अपने संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि हर क्षेत्र की अपनी कला, संस्कृति और परंपराएं होती है। ये केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि आर्थिक विकास का माध्यम भी बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कह रहे हैं कि हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य, बुनाई, मिट्टी कला और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन के माध्यम से भी स्थानीय संस्कृति को आर्थिक अवसरों से जोड़ा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय कला और संस्कृति का संरक्षण विकास को एक मानवीय और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करता है अंजलि। स्थानीय विकास में महिलाओं की भूमिका भी होती है। महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी किया है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बिना स्थानीय विकास की कल्पना भी अधूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जिस गाँव ने अपने संसाधनों को पहचाना उसने अपने भविष्य को संवार लिया और जिस समाज ने अपनी ताकत को समझा उसने विकास का नया इतिहास रच दिया।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें भी हमारे जो आसपास संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब उन्हें हम पहचान लेंगे तो हमारे गांव की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, विकास तभी सार्थक है जब पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखे। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन श्रोताओं अल्पकालिक लाभ तो दे सकता है लेकिन दीर्घकाल में ये विनाशकारी भी सिद्ध होता है।
0: जी जी,
1: इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे कि स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास केवल एक विकास मॉडल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज की आधारशिला है। ये विकास का ऐसा मार्ग है जो लोगों को उनके संसाधनों, संस्कृति और पर्यावरण से जोड़ता है। इससे रोजगार बढ़ता है, पलायन कम होता है, महिलाओं और युवाओं को

0: अवसर मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
1: जी हाँ,
0: आज आवश्यकता इस बात की अंजलि जी कि हम अपने गांव, अपने कस्बों, अपने क्षेत्रों की शक्ति को पहचाने। विकास की शुरुआत हमेशा श्रोताओं अपने आसपास से ही होती है। यदि हम अपने स्थानीय संसाधनों का सम्मान और संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्थानीय संसाधनों को पहचान कर उनका संरक्षण करें और उनका सदुपयोग करें। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है, यही समृद्धि का आधार है और यही सच्चे विकास की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानु सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव हम कैसे करें।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही समय पर सही भोजन करने से भी अच्छा रहता है। प्रकृति हर मौसम में अलग अलग फल सब्जियां और अनाज उपलब्ध कराती है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि श्रोता साथियों, हमारे शरीर की आवश्यकताएं भी मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि हम मौसम के अनुरूप अपने खान पान में बदलाव करें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं और शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग प्रतिरोधक बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही समय पर सही भोजन करने से अच्छा रहता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आजकल लोग हर मौसम में एक जैसा भोजन करने लगे हैं। ठंड में ठंडी चीजें, गर्मी में तला भुना भोजन और बरसात में अस्वच्छ खाद्य पदार्थ खाने की आदत के कारण श्रोता साथियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मौसम के साथ साथ हमारी थाली भी बदलनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि मौसम और शरीर का आखिरकार गहरा संबंध किस तरीके से है।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर काम करता है। गर्मी में शरीर को ठंडक और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सर्दी में शरीर को गर्माहट और अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। बरसात में पाचन शक्ति कुछ कमजोर हो सकती है, इसलिए हल्का और स्वच्छ भोजन लाभदायक होता है।
0: जी हाँ।
1: यदि श्रोता साथियों हम मौसम की जरूरतों को समझकर भोजन करें तो शरीर संतुलित रहता है और बीमारियों का खतरा भी कम होता है। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि हर मौसम में खान पान बदलना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी क्यों होता है तो श्रोता साथियों, इससे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता बदलती है। पाचन शक्ति हर मौसम में समान नहीं रहती है, इसलिए खाने में बदलाव करना भी जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: मौसम के अनुसार संक्रमण और बीमारियों का खतरा अलग अलग होता है। शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है और सही भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हर मौसम में हमें खान पान बदलने की जरूरत होती है। बहुत सी बार हम बच्चों को या किसी व्यक्ति को समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो वो हमसे ये सवाल करते हैं इससे क्या होगा, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हर मौसम में खान पान के जो तौर तरीके हैं वो बदलने की जरूरत है। अगर हम ठंड के मौसम में ज्यादा ठंडी चीजें खाएंगे तो इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव अवश्य हमें देखने को मिलेगा।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि गर्मियों के मौसम में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे पानी और खनिज लवण की कमी हो सकती है। इसीलिए ऐसा भोजन हमें करना चाहिए जो हमारे शरीर को ठंडक और पर्याप्त पानी दे। श्रोता साथियों, गर्मियों में आप तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी, साथ में नींबू, छाछ और दही, नारियल पानी, मौसमी फल, हरी सब्जियां, इन सभी का सेवन आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि हम ये सारी चीजें जो खाते हैं उनके साथ हमें कुछ चीजों की सावधानी भी रखनी चाहिए। तो श्रोता साथियों, आप बहुत अधिक तला भुना भोजन खाने से गर्मियों के मौसम में बचे, अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन न करें और बार बार गर्मी के मौसम में अंजलि जी हमें ठंडे पेय भी नहीं पीने चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मिठाइयों का सेवन न करें। साथ ही श्रोता साथियों, लंबे समय तक रखा हुआ भोजन भी हमें नहीं खाना है, जिससे हम देखते हैं कि गैस और अपच जैसी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर मौसम में हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक चीजें हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हमें गर्मियों में पानी के महत्व को भी समझना है। श्रोता साथियों, गर्मी में केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना जरूरी नहीं है, बल्कि समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। इससे हम देखते हैं कि शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, थकान कम होती है, त्वचा स्वस्थ रहती है, कब्ज की समस्या नहीं होती है और शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बरसात के मौसम में भी हमें अलग तरीके के भोजन करने की जरूरत है। बरसात का मौसम जो होता है उसमें बैक्टीरिया और वायरस तेजी से बढ़ते हैं। इस मौसम में मनीषा स्वच्छ और ताजा भोजन करना सबसे जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: बरसात में हमें ताजा बना भोजन, अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां, मूंग की दाल, दलिया, सूप, अदरक लहसुन का सीमित उपयोग करना चाहिए और हल्दी वाला भोजन हमें करना है। और हमें खुले में मिलने वाले जो भोजन होते हैं, फास्ट फूड और पैकेट्स बंद वाले, उनसे दूरी बनानी है।
0: जी हाँ।
1: कटे हुए फल और सब्जियां नहीं खानी है, बासी खाना नहीं खाना है, गंदा पानी पीने से बचना है और अधिक तला हुआ भोजन भी हमें बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं कि मौसम के अनुसार हम खान पान में बदलाव कैसे करें। तो श्रोता साथियों, ये बातें हमारी आगे भी आपसे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए अंजलि जी हम कार्यक्रम का एक और गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि हमें गर्मियों में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और कैसा भोजन करना है। और जैसा कि गीत से पहले हमने बरसात में भी किस तरीके का भोजन हम कर सकते हैं उसके बारे में जाना, यही श्रोता साथियों, बरसात में स्वच्छता का विशेष हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि भोजन बनाने से पहले हाथों को हमें धोना है, फल और सब्जियों को अच्छी तरह साफ करना है, पीने का पानी साफ रखना है, भोजन को ढककर रखना है, और बाहर का अस्वच्छ भोजन जो होता है वो हमें कम ही खाना होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम सर्दियों के भोजन की बात करें तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सर्दियों के समय हमारा शरीर है वो गर्म रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए हमें पौष्टिक और ऊर्जा देने वाले भोजन का सेवन करना है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि श्रोता साथियों, बाजरा, मक्का, तिल, गुड़, मूंगफली, सूखे मेवे, गाजर, पालक, मेथी और सरसों का साग, साथ ही अदरक और लहसुन का सेवन हम कर सकते हैं। इनका सेवन करेंगे श्रोता साथियों तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इनसे हमें अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि धूप शरीर को विटामिन डी देती है। यदि पौष्टिक भोजन के साथ साथ हम नियमित धूप भी लें तो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल मनीषा, प्रकृति हर मौसम में वही फल और सब्जियां हमें देती है जिसकी उस समय शरीर को आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: इससे हम देखते हैं कि हमारा पोषण स्तर बना रहता है, कम रासायनिक संरक्षण होता है, बेहतर स्वाद हमें मिलता है और सस्ती चीजें हमें उपलब्ध हो पाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसकी अधिक ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है। श्रोता साथियों, अपने क्षेत्र में मिलने वाला भोजन जो होता है वो शरीर के लिए अधिक अनुकूल होता है, इसलिए स्थानीय अनाज, दालें, सब्जियां और फल न केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक होते हैं।
1: जी हाँ।
0: हमें बच्चों को हर मौसम में संतुलित भोजन देना चाहिए। उनके भोजन में हमें दूध, दाल, मौसमी फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और घर का ताजा भोजन शामिल करने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ जैसा कि आपने बच्चों के बारे में बताया, इसी के साथ हमें बुजुर्गों के भोजन की भी सावधानी रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बुजुर्गों का पाचन शक्ति है वो अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए हमें उनको हल्का भोजन देना है, पर्याप्त पानी हमें पिलाना है, अधिक तेल और मसाले वाला भोजन हमें नहीं खिलाना है। मौसम के अनुसार श्रोता साथियों, हमें फल और सब्जियां लेनी है और साथ ही उनको समय पर भोजन देना है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: हर मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, दही, तिल, गुड़ और मौसमी फल का सेवन हमें करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: साथियों, केवल भोजन बदलाव ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव कम करना, समय पर भोजन करना है, पर्याप्त पानी पीना है और स्वच्छता बनाए रखनी है। आज हम देखते हैं मनीषा के फास्ट फूड, पैकेट खाद्य पदार्थ, शीतल पेय का सेवन बढ़ गया है। इससे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। यदि हम फिर से मौसमी और पारंपरिक भोजन अपनाएं तो इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि अगर मौसम परिवर्तन होता है तो हमें अपने भोजन को है वो धीरे धीरे बदलना है। पानी की मात्रा हमें मौसम के अनुसार ही रखनी है साथियों। साथ ही ताजे फल और सब्जियां खाएं, बासी भोजन न करें। साथ ही श्रोता साथियों, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। शरीर की प्रक्रियाओं को समझे साथियों और उसी के अनुसार आप भोजन चुने।
0: बिल्कुल, कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि यदि हर परिवार मौसम के अनुसार संतुलित भोजन को अगर अपनाएंगे तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: हाँ।
0: इससे बीमारी पर होने वाला खर्च कम होगा और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी। क्योंकि श्रोता साथियों, स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय महंगा भोजन नहीं बल्कि सही मौसम में सही भोजन है।
1: बिल्कुल।
0: प्रकृति हमें हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम प्राकृतिक और संतुलित खान पान अपनाएं तो दवाइयों की आवश्यकता भी कम पड़ सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव केवल एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: गर्मियों में ठंडक देने वाला, बरसात में स्वच्छ और हल्का, साथ ही सर्दियों में ऊर्जा देने वाला भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। मौसमी फल, सब्जियां, स्थानीय खाद्य पदार्थ अपनाकर श्रोता साथियों हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए साथियों, प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चले अपने

0: को मौसम के अनुसार बदले और साथ ही स्वस्थ जीवन की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो आज जैसा कि कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं कि किस तरीके से मौसम के अनुरूप हमें हमारे खान पान में बदलाव करने की जरूरत होती है।
0: जी हाँ,
1: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावर अमर हित्ता भाई बोनो ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूं हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज आप भाई बोनो तक की बातचीत नु विषय है कि खुश रहवानी कला अपने केम भूलता सही रहो।
0: होवे
1: आपने देखो हो कि आज ना टाइम में अपने कने घणा कानी सुविधाएं थी गई है, बेहतर संसाधन है, तेज तकनीकी है, पर एने बावजूद भी घणो मन को एम कहे है कि मन खुश नहीं रहतो। तो आखिर आवो केम है? खुशी वास्तव में कम थी गई है या आपने इन्हें ओरोपो भूली क्या हो? तासे कार्यक्रम में अन्य विषय माते आपने खाना कानी वाते आपने भाइन बुनों तक की करंगा, पर मारू मन थी रू है कि किम ने कार्यक्रम ने शुरुआत नू पहलू की तापड़ भाइन बुनों ने आपने हमरा विदो।
0: होवे अंजलि बोन तो भाइन बुनो हमारा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते हैं।
1: होवे तो भाइन बुनो आप हमर तरह जू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वाक रेडियो 90.8 FM माते।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि सम्मान देने की आदत समाज को कैसे बदलती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि सम्मान देने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि उसका व्यक्तित्व और बड़ा हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: जहाँ सम्मान की भाषा बोली जाती है वहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, समाज आगे बढ़ता है और इंसानियत जीवित रहती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि धन से घर बनते हैं लेकिन सम्मान से परिवार बनते हैं, कानून व्यवस्था बना सकते हैं और लेकिन सम्मान समाज को संस्कार देता है। इसी के साथ आज कार्यक्रम में इस विषय पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं कि सम्मान देने की आदत समाज को कैसे बदल सकती है। बातें ढेर सारी रहेंगी लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सम्मान देने की आदत समाज को कैसे बदलती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की मजबूती केवल कानूनों, नियमों या व्यवस्था से नहीं, श्रोता साथियों, बल्कि आपसी व्यवहार और संस्कारों से तय होती है।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है श्रोता साथियों सम्मान देने की आदत का। सम्मान केवल किसी बड़े व्यक्ति को प्रमाण करना या औपचारिक शब्द बोलना तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि हर व्यक्ति के अस्तित्व, विचार, भावनाओं, अधिकारों और व्यक्तित्व को स्वीकार करना ही वास्तविक सम्मान है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जब कोई व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है तो वह केवल सामने वाले के मन को ही नहीं जीतता है, बल्कि समाज में विश्वास, सहयोग और सौंदर्य का वातावरण भी पैदा करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, हमारी भावनाओं को समझे, हमें सम्मान दे, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि सम्मान पाने का सबसे आसान रास्ता दूसरों को सम्मान देना है? समाज की अधिकांश समस्याएं केवल संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि आपसे सम्मान की कमी से पैदा होती है।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ सम्मान होता है वहाँ संवाद होता है, और जहाँ संवाद होता है वहाँ समाधान भी निकलता है। आज हम कार्यक्रम में यही जानेंगे कि सम्मान केवल एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि समाज को बदलने वाली एक ऐसी शक्ति है जो परिवार से लेकर पूरे देश तक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।
0: जी हाँ,
1: सम्मान का अर्थ केवल किसी बड़े व्यक्ति के पैर छूना या औपचारिक अभिवादन करना नहीं होता है। सम्मान का असली अर्थ है हर व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करना, किसी की बात को धैर्य पूर्वक सुनना, मतभेद होने पर भी शालीन व्यवहार करना, किसी की मेहनत और योगदान की कद्र करना, किसी की कमजोरियों का मजाक न उड़ाना। सम्मान का संबंध धन, पद, जाति, धर्म, शिक्षा या उम्र से नहीं, बल्कि इंसानियत से है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समाज में कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। परिवार का विवाद, सामाजिक असहिष्णुता, पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी, महिलाओं के प्रति असम्मान, जाति और धार्मिक भेदभाव, कार्यालयों पर तनाव, सोशल मीडिया पर कटु भाषा का बढ़ता चलन, श्रोता साथियों, इन सभी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं सम्मान की कमी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान देने की आदत को विकसित कर ले अंजलि जी, तो समाज की अनेक समस्याएं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी।
1: जी जी,
0: सम्मान श्रोता साथियों वह शक्ति है जो किसी भी संबंध को मजबूत बनाती है। यह परिवार को जोड़ती है, मित्रता को घेरा करती है, कार्यस्थल को बेहतर बनाती है और पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है।
1: जी हाँ।
0: सम्मान का अर्थ श्रोता साथियों केवल उम्र या पद के आधार पर नहीं किया जा सकता, जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था श्रोता साथियों, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय अधिकारों, गरिमाओं को स्वीकार करना भी है। यह भावना समाज के सभ्य और संवेदनशील बनाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, सम्मान की शुरुआत घर से ही होती है। किसी भी समाज की पहली पाठशाला परिवार होता है। यदि बच्चे घर में माता पिता को एक दूसरे का सम्मान करते हुए देखते हैं, यदि दादा दादी की राय सुनी जाती है, यदि घर के छोटे बच्चों की भावनाओं को भी महत्व दिया जाता है, तो वही बच्चे आगे चलकर समाज में सम्मान देना सीखते हैं। लेकिन यदि घर में अपमान, कटु भाषा और तिरस्कार का माहौल हो तो बच्चे भी वही व्यवहार सीखते हैं। इसलिए समाज बदलने का पहला कदम घर के वातावरण से ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सम्मान देने की आदत व्यक्ति के चरित्र का भी परिचय करती है।
1: बिल्कुल,
0: वह बताती है श्रोता साथियों कि वह दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील और जिम्मेदार है। सम्मान का व्यवहार समाज में विश्वास पैदा करता है। श्रोता साथियों, जब लोग स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं तो वे दूसरों के प्रति भी सम्मान का व्यवहार को अपनाते हैं। इस प्रकार सम्मान की भावना श्रोता साथियों व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़कर रखती है और धीरे धीरे पूरे समाज की संस्कृति बन जाती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज कई बार लोग अपनी सफलता, धन या पद के कारण दूसरों को कमतर समझने लगते हैं। इससे हम देखते हैं कि अहंकार, दूरी, संघर्ष बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत श्रोता साथियों, सम्मान देने वाला व्यक्ति ही वो लोगों के साथ मिलकर चलता है, इसीलिए उसे समाज में अधिक सहयोग और विश्वास प्राप्त होता है।
1: जी हाँ मनीषा, हर रिश्ता विश्वास और सम्मान पर टिका होता है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहाँ परिवार में शांति रहती है। जहाँ भाई बहन एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं वहाँ प्रेम बना रहता है। जहाँ मित्र एक दूसरे की सीमाओं और विचारों का सम्मान करते हैं वहाँ मित्रता लंबे समय तक चलती है।
0: जी हाँ,
1: सम्मान की कमी रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर रही है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है वो महिलाओं का सम्मान है। जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है श्रोता साथियों, तो हमारा समाज भी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है। महिलाओं के प्रति सम्मान का अर्थ केवल सुरक्षा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान का अवसर, समान अधिकार, सम्मान की पहचान देना भी जरूरी है। जिस समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता है साथियों, वहाँ परिवार अधिक शिक्षित, स्वस्थ और आर्थिक रूप से मजबूत होता है। महिलाओं का सच्चा सम्मान बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अंजलि जी हम देखते हैं कि एक सम्मानित और सशक्त महिला अपने परिवार और समाज दोनों को सकारात्मक दिशा दे सकती है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से सम्मान की जो भावना है वो समाज को बदल देती है।
0: जी हाँ।
1: ये बातें निरंतर आगे हमारे श्रोता साथियों के साथ ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बनी रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि परिवार में सम्मान किस तरीके से रिश्तों को मजबूत बनाता है, यही दोस्तों कार्यस्थल की बात करें तो किसी भी कार्यालय, खेत, दुकान, स्कूल, संस्था में सम्मान का वातावरण काम की गुणवत्ता को बढ़ा देता है।
1: जी हाँ।
0: जब कर्मचारी का सम्मान होता है तो वह अधिक मन लगाकर काम करता है। जब शिक्षक का सम्मान होता है तो शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। जब किसान, मजदूर, सफाई कर्मी और अन्य श्रमिकों के श्रम का सम्मान होता है तब समाज में समानता की भावना विकसित होती है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कहना चाहेंगे कि बहुत सी समस्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम सम्मान पूर्वक बातचीत करें तो कई विवाद बिना झगड़े के समाप्त हो सकते हैं। सम्मान संवाद का पहला नियम है, जहाँ सम्मान होता है वहाँ आरोप कम और समाधान अधिक होते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सम्मान और शिक्षा का भी गहरा संबंध है। विद्यालय श्रोता साथियों वह स्थान है जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यदि शिक्षक विद्यार्थी का सम्मान करे और विद्यार्थी अपने शिक्षक का, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सम्मान का व्यवहार उनके बीच बना रहता है
0: जी जी।
1: और बच्चे हैं वो सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक भी बने रहते हैं। श्रोता साथियों, सम्मान का माहौल बच्चों को आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग की भावनाओं को विकसित करता है। इसके विपरीत अंजलि जी, हम देखते हैं कि अपमान, उपेक्षा या भेदभाव बच्चों के मन को हीन भावना पैदा करता है और डर और निराशा की ओर ले जाता है। श्रोता साथियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं

0: है बल्कि अच्छे संस्कारों का निर्माण करना भी है। इसीलिए विद्यालयों में शिष्टाचार, सहिष्णुता, संवाद और परस्पर सम्मान की भावनाओं को विकसित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम इन भावनाओं को विकसित करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगी लोगों के प्रति सम्मान करना सीखेंगी, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल मनीषा, किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जा सकती है कि वहाँ महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है।
0: जी हाँ,
1: महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं बल्कि समाज निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति है। जब महिलाओं की शिक्षा, विचार और निर्णयों का सम्मान किया जाता है तब पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: सम्मान से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली पीढ़ी भी बेहतर संस्कार सीख पाती है। श्रोता साथियों, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते हैं बल्कि अनुभव का खजाना होते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग उनके अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ संस्कार और परंपराएं सुरक्षित रहती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि युवा है वो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि युवाओं में दूसरों के प्रति सम्मान करने की आदत विकसित हो श्रोता साथियों, तो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: आज कई बार श्रोता साथियों मतभेदों के कारण विवाद बदलते जा रहे हैं, जबकि श्रोता साथियों सम्मानजनक संवाद हर समस्याओं को बेहतर समाधान की ओर ले जाता है। युवाओं को समझना होगा कि किसी भी राय अलग और गलत तरीके से हमें नहीं देना है। विचारों की विभिन्नताओं को स्वाभाविक रूप से हमें समझना है। श्रोता साथियों, व्यवहार में मर्यादा और सम्मान को भी हमें बनाए रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम अपने व्यवहार में मर्यादा और सम्मान को बनाए रखते हैं तो वही हमारी सच्ची परिपक्वता की निशानी होती है। यही गुण श्रोता साथियों उन्हें बेहतर नागरिक और सफल जिम्मेदार इंसान भी बनाता है।
1: जी हाँ मनीषा, अक्सर हम सोचते हैं कि सम्मान केवल बड़ों को देना चाहिए, लेकिन बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: जी हाँ,
1: जब बच्चे की बात सुनी जाती है, उसे डांटने के बजाय समझाया जाता है, उसकी मेहनत की सराहना की जाती है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: जी हाँ,
1: सम्मानित बच्चा आगे चलकर दूसरों का सम्मान करना भी सीखता है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, मतभेद होना स्वाभाविक है श्रोता साथियों, लेकिन मतभेद को मनभेद में बदल देना समाज के लिए नुकसानदायक है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीख जाएं तो समाज में सहिष्णुता और शांति बढ़ेगी। आज सोशल मीडिया ने संवाद आसान बनाया है, लेकिन कई बार लोग जो है वो बिना सोचे समझे अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। यदि हम डिजिटल दुनिया में भी सम्मानजनक भाषा अपनाएं और तथ्य साझा करें और असहमति को शालीनता से व्यक्त करें तो ऑनलाइन वातावरण भी स्वस्थ बन सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसके प्रयासों की सराहना हो और उसे महत्व दिया जाए। श्रोता साथियों, जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: और वो स्वयं को समाज के आगे अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है। इसके विपरीत श्रोता साथियों, लगातार अपमान, तिरस्कार, उपेक्षाएं हुई वो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। सम्मान पूर्वक व्यवहार है वो तनाव को कम करता है, रिश्तों में व्यवहार को बढ़ाता है और श्रोता साथियों जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करता है। इसीलिए श्रोता साथियों, सम्मान केवल सामाजिक मूल्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य का भी बेहतर आधार है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे कि जहाँ अपमान होता है वहाँ गुस्सा बढ़ता है, और जहाँ गुस्सा बढ़ता है वहाँ विवाद और हिंसा जन्म लेते हैं। लेकिन जहाँ सम्मान होता है वहाँ धैर्य, सहयोग और समझदारी बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए सम्मान केवल एक व्यवहार नहीं बल्कि शांति स्थापित करने का माध्यम भी है। जब हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिलता है तब भेदभाव कम होने लगता है। जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति और पेशे के आधार पर किसी का अपमान करना समाज को कमजोर कर देता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों, सम्मान समानता का आधार है। समाज बदलने के लिए बड़े बड़े भाषण नहीं, छोटी छोटी आदतें काफी होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे मुस्कुराकर अभिवादन करना, धन्यवाद कहना, गलती होने पर क्षमा मांगना, दूसरों की बात बीच में न काटना, किसी की मेहनत की प्रशंसा करना, छोटे बड़े सभी से विनम्रता से बात करना, सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखना और किसी की अनुपस्थिति में भी उसका सम्मान करना।
0: बिल्कुल,
1: छोटी आदतें मनीषा बड़े परिवर्तन की नींव बनती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक भाषाएं, धर्म, सांस्कृतिक और परंपराएं पाई जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों हम एक दूसरे की विविधताओं का सम्मान करें तो हम देखते हैं कि विविधता है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। जब नागरिक एक दूसरे की आस्था, संस्कृति और जीवन शैली का आदर करते हैं साथियों, तब सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। सम्मान की भावना श्रोता साथियों अनेकता में एकता की भावना है जो हमें हमेशा जीवित रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि किस तरीके से सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सम्मान करने से ही समाज में चीजें बदलती हैं।
0: जी हाँ।
1: ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रही थी, सम्मान देने की आदत समाज को कैसे बदलती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि सम्मान एक दिन से नहीं आता है, बल्कि श्रोता साथियों छोटी छोटी आदतों से विकसित होता है। हमें अपने बात करते समय हमें अपनी भाषाओं को विनम्र रखना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों किसी भी बात को हम करते हैं तो हमें सोच समझ कर और धैर्य पूर्वक हमें करनी है। दूसरों के विचारों को अहमियत देनी है। साथ ही श्रोता साथियों हमें शालीनता बना के रखनी है। छोटे बड़े, अमीर गरीब या किसी भी पेशेवर व्यक्ति के साथ सम्मान का व्यवहार करना है। गलत होने पर क्षमा मांगने से संकोच न करें श्रोता साथियों। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय श्रोता साथियों उनकी सहार ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर सभ्य व्यवहार को अपनाएं। साथ ही श्रोता साथियों घर और कार्यस्थल पर सभी के साथ प्रसन्नता से व्यवहार करें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को एक प्रेरक कहानी सुनाना चाहेंगे। श्रोता साथियों, एक गाँव में दो दुकानदार थे। दोनों की दुकानें एक दूसरे के सामने थी। पहला दुकानदार ग्राहकों से रूखे व्यवहार में बात करता था, छोटी सी बात पर नाराज हो जाता और लोगों का अपमान कर देता। दूसरा दुकानदार हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता, चाहे कोई भी कुछ खरीदे या नहीं खरीदे, वह सम्मान पूर्वक बात करता था। धीरे-धीरे लोग केवल सामान खरीदने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए दूसरी दुकान पर जाने लगे। कुछ वर्षों बाद पहली दुकान लगभग खाली रहने लगी, जबकि दूसरी दुकान पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन पहले दुकानदार ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा कि मैं सामान बेचने से पहले इंसान का सम्मान करता हूँ। जब इंसान सम्मान महसूस करता है तो विश्वास अपने आप बन जाता है। यह कहानी बताती है कि सम्मान केवल रिश्ते नहीं बनाता बल्कि विश्वास, सहयोग और सफलता भी दिलाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सम्मान देने वाला व्यक्ति समाज में विश्वास और स्नेह को प्राप्त करता है। उसके संबंध अधिक श्रोता साथियों मजबूत होते हैं। लोग उनके साथ सहयोग करना पसंद करते हैं और साथ ही श्रोता साथी व्यक्तित्व भी उनका प्रभावित होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज समाज के स्तर पर सम्मान और संस्कृति को विकसित करना हमारे लिए श्रोता साथियों बहुत जरूरी है। भेदभाव, कटुता, आपसी संघर्ष कम करने की जरूरत है। साथ ही सहयोग, सहानुभूति, भाईचारा और सामाजिक जिम्मेदारी को भावना है उनको बढ़ाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा समाज श्रोता साथियों अधिक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संवेदनशील भी होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों को यही संकल्प लेना होगा अपने जीवन में कि हर व्यक्ति से सम्मान पूर्वक बात करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, मतभेद होने पर भी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिकों सभी का सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: व्यवहार से समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी हमें लाना होगा। श्रोता साथियों, सम्मान कोई महंगी वस्तु नहीं है, फिर भी इसकी कीमत अनमोल है। यह ऐसा दीपक है जो केवल एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का मार्ग रोशन कर सकता है। जब सम्मान हमारी आदत बन जाता है तब परिवारों में प्रेम बढ़ता है, पड़ोस में विश्वास मजबूत होता है, कार्यस्थलों पर सहयोग का वातावरण बनता है और समाज में शांति, समानता और सद्भाव की नई पहचान स्थापित होती है।
0: जी हाँ,
1: हमें याद रखना होगा कि समाज बड़े कानूनों या बड़े भाषणों से उतना नहीं बदलता जितना लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार से बदलता है।
0: जी हाँ,
1: यदि हम हर दिन केवल एक व्यक्ति के साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करें, उसके बाद ध्यान से सुने, उसकी मेहनत की सराहना करें, उसकी गरिमा का आदर करें, तो ये छोटा सा कदम परिवर्तन की लंबी श्रृंखला की शुरुआत बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमें ऐसा समाज बनाने का संकल्प लेना है जहाँ सम्मान किसी विशेष व्यक्ति का अधिकारी नहीं बल्कि हर इंसान का स्वाभाविक हक हो। क्योंकि जब सम्मान हमारी पहचान बन जाएगा तब विश्वास हमारी ताकत बनेगा, सहयोग हमारी संस्कृति बनेगा और मानवता हमारी सबसे बड़ी पहचान होगी।
0: जी हाँ,
1: यही परिवर्तन है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, संवेदनशील और खुशहाल समाज की नींव रखेगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि सम्मान देने की आदत केवल एक अच्छा संस्कार नहीं है साथियों, बल्कि सभ्य समाज की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल,
0: यह परिवारों को जोड़ती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है, शिक्षा को सार्थक बनाती है, कार्यस्थलों में सकारात्मकता फैलाती है और साथ ही श्रोता साथियों राष्ट्र को एकजुट रखती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले अंजलि जी कि हर इंसान के साथ वह गरिमा के अनुरूप व्यवहार करेगा तो समाज में प्रेम, समानता, सहयोग और शांति का वातावरण स्वयं आ सकता है। इसीलिए श्रोता साथियों हमें याद रखना चाहिए कि सम्मान पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है पहले हम स्वयं को सम्मान देना सीखें।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सम्मान किसी महंगे उपहार की तरह नहीं है बल्कि एक अमूल्य व्यवहार है जिसे हर व्यक्ति बिना बिना किसी खर्चे के बांट सकता है।
1: हाँ।
0: जितना अधिक श्रोता साथियों हम दूसरों को सम्मान देंगे उतना ही अधिक हमारा विश्वास, प्रेम और अपनापन है वो हमें प्राप्त होगा। समाज में स्थायी परिवर्तन किसी बड़े आंदोलन से नहीं साथियों, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के छोटे छोटे सम्मानजनक व्यवहार से ही शुरू होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इसलिए हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसकी ऊंची इमारतों, आधुनिक तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि उसके लोगों के व्यवहार से होती है। यदि हमारे शब्दों में विनम्रता, हमारे व्यवहार में संवेदनशीलता और हमारे मन में दूसरों के प्रति आदर का भाव है, तो हम अनजाने में ही एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे होते हैं जहाँ लोग बिना भय के अपनी बात रख सकते हैं,
0: जी हाँ,
1: अपनी पहचान के साथ सम्मान पूर्वक जी सकते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। सम्मान देना केवल सामने वाले को अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि यह अपने व्यक्तित्व की परिपक्वता और संस्कारों का परिचय भी है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति दूसरों की गरिमा का सम्मान करता है वह स्वयं भी समाज में विश्वास, प्रेम और आदर का पात्र बन जाता है। यही कारण है कि सम्मान का प्रभाव केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल, गाँव, शहर और पूरे समाज के वातावरण को सकारात्मक दिशा देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से सम्मान देने के आदत समाज को कैसे बदलती है, इस विषय को लेकर बातें चल रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना कि किस तरीके से सम्मान देना केवल सामने वाले को अच्छा महसूस कराना नहीं होता है, बल्कि यह अपने व्यक्तित्व की परिपक्वता और संस्कारों का परिचय भी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सम्मान को केवल औपचारिक शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाएं। सड़क पर काम करने वाले श्रमिकों से लेकर खेत में मेहनत करने वाले किसान तक, घर की महिलाओं से लेकर विद्यालय के बच्चों तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर व्यक्ति को सम्मान, गरिमा और महत्व देने की आदत विकसित करनी है। जब हम किसी की बात को धीरे से सुनते हैं, उसकी मेहनत की सराहना करते हैं, असहमति के बावजूद शालीनता बनाए रखते हैं और किसी का अपमान करने के बजाय उसका मनोबल बढ़ाते हैं, तभी सम्मान अपने वास्तविक अर्थ में जीवित रहता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यह भी याद रखना चाहिए कि सम्मान की संस्कृति केवल उपदेशों से नहीं बनती, बल्कि उदाहरणों से बनती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर और समाज में होते हुए देखते हैं। यदि अगली पीढ़ी को संस्कारवान, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तो हमें स्वयं अपने व्यवहार में वह परिवर्तन लाना होगा जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे छोटे छोटे कार्य, मधुर भाषा, मुस्कान, धन्यवाद, क्षमा और सहयोग धीरे धीरे समाज के चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हम सभी को यह संकल्प लेना है कि सम्मान को किसी अवसर, पद या परिचय का विषय नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाएंगे। हम हर व्यक्ति में इंसानियत को देखेंगे, भेदभाव के बजाय सम्मान को अपनाएंगे और अपने व्यवहार से यह संदेश देंगे कि सभ्य समाज वही है जहां हर व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। जब सम्मान हमारी आदत बन जाएगा, तब केवल रिश्ते ही नहीं सुधरेंगे, बल्कि समाज में विश्वास, सौहार्द, सहयोग और मानवता की ऐसी मजबूत नींव तैयार होगी जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपना भविष्य बना सकेंगी। यही सच्चे अर्थों में एक जागरूक, संवेदनशील और प्रगतिशील समाज की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अनेक समस्याएं श्रोता साथियों केवल इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनने के बजाय अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं।
0: जी हाँ।
1: सम्मान पूर्वक संवाद का अर्थ है साथियों कि सामने वाले की बात को भी हमें अवसर देना है, उसकी बात को समझने का प्रयास करें और फिर अपनी शालीनता को अपने व्यक्त करना है। ऐसा संवाद श्रोता साथियों गलतफहमियों को कम करता है और साथ ही हमारे रिश्ते हैं उनको भी मजबूत करता है और हमें विश्वास दिलाता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है साथियों, बल्कि दूसरों की क्षमता को पहचानना, उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर देना भी एक कला है। जो नेता अपने सहयोगियों की बात को सुनता है, उसके सुझावों को महत्व देता है और उनके कार्यों की सराहना करता है श्रोता साथियों, उसके साथ ही लोग पूरी निष्ठा से कार्य करना पसंद करते हैं। सम्मान पर आधारित नेतृत्व श्रोता साथियों किसी भी संस्था, संगठन या समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि ये समझना आवश्यक है हमारे लिए कि समाज में परिवर्तन किसी एक बड़े अभियान से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की छोटी छोटी अच्छी आदतों से आता है। सम्मान भी एक ऐसी ही आदत है जो धीरे धीरे लोगों के सोचने का तरीका बदल देती है। जब किसी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी भावनाओं को महत्व दिया जा रहा है और उसकी गरिमा सुरक्षित है, तब उसके भीतर भी दूसरों के प्रति वही भावना जन्म लेने लगती है। इस प्रकार सम्मान का एक छोटा सा व्यवहार कई नए सम्मानपूर्ण व्यवहारों को जन्म देता है और यही क्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव बन जाता है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन यदि लोगों के बीच विश्वास, अपनापन और संवेदनशीलता कम हो जाएगी तो विकास अधूरा रह जाएगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जहां किसी की पहचान उसके पहनावे, भाषा, आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म या पैसे से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने के आधार पर की जाए। और यही वह सोच है जो इंसान को विभाजन से निकाल कर एकता की ओर ले जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरों का सम्मान करना महत्वपूर्ण। देखिए श्रोता साथियों, इसके साथ ही अपना आत्मसम्मान भी हमें बनाए रखना चाहिए। सम्मान का अर्थ है किसी के सामने स्वयं को छोटा साबित करना नहीं होता। सच्चा सम्मान वही होता है जिसमें विनम्रता हो, आत्मविश्वास हो। साथ ही श्रोता साथियों, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों के सम्मान को महत्व देता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि समाज वह बीज है जिससे विश्वास का वृक्ष उगता है, सहयोग की शाखाएं फैलती हैं और प्रेम के फूल खिलते हैं। बिल्कुल, यह किसी भी समाज की सबसे बड़ी नैतिक पूंजी है। श्रोता साथियों, यदि हम चाहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक शांतिपूर्ण, संवेदनशील और प्रगतिशील समाज में जीवन जी पाएंगे। तो श्रोता साथियों, आज के इस व्यवहार में सम्मान का सबसे बड़ा संस्कार हमें सिखाता है।
0: बिल्कुल,
1: जब सम्मान हमारी आदत बन जाएगा तब समाज में बदलाव केवल दिखाई नहीं देगा बल्कि हर व्यक्ति उसे महसूस भी करेगा।
0: जी हाँ मनीषा, यदि हम सचमुच अपने परिवार, गांव, विद्यालय, कार्यस्थल और देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार से शुरुआत करनी होगी। परिवर्तन का इंतजार करने के बजाय स्वयं परिवर्तन का उदाहरण बनना होगा। जब हमारे शब्दों में मिठास, निर्णयों में न्याय और संबंधों में विश्वास और व्यवहार में सम्मान होगा तब हमारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे सकारात्मक हो जाएगा। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं कार्यक्रम में और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी, दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है रोजाना सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, हम आपको आपके ही द्वारा भेजे गए पसंदीदा नगमों से रूबरू करवाते हैं। तो आज भी कार्यक्रम का सिलसिला ऐसे ही दोपहर 1 बजे तक बना रहेगा हमारा आपके साथ में, और ढेर सारी फरमाइशों के साथ हम और गीतों के साथ हम मनोरंजन करने वाले हैं श्रोता साथियों। अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश के गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सुन सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है श्रोता साथियों फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर एक बार फिर से बताना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और पसंदीदा नगमे हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं अनुमति चाहूँगी पहली फरमाइश की ओर बढ़ने की। दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है खरगोन मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा, गीत के बोल है प्यार कभी कम नहीं करना। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज आर्यन और आरोही ऐशिका और श्वेता वर्मा जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी पंडरपुर से हैं जाखिल मुलाणी, सुबेहान, सलमा, मुमता, दिलसाद, नसरे भी, बानो भी, बादशाह मुलाणी और समस्त मुलाणी परिवार सदस्यगण। पंडरपुर रोहिदास चौक से सिटी से जुड़ रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा शिंदे, शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से है असैफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है प्यार कभी कम नहीं करना। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है गाजीबाद से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं गाजीबाद से शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, बागपत से हैं जगमोहन सिंह बजावत, मुनेश देवी जी, अर्जुन बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधर नूतन, शिषपाल अकेला जी, भुवनेश्वरी देवी जी दिल्ली से, रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी, पद्मा टोकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नित्री शाह, सुरभि शाह, अश्विन जी शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। कोका बिलाई से जुड़ रहे हैं उत्तम सिंह झंगेल, मोरर जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष झंगेल, नंदिनी झंगेल, सुकरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल। कश्मीर से है फिरजा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। मजनूगा टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लखप्रीत कौर और कमरजीत कौर। नवाशहर से है सुरेंद्र सानू, अनिता सांधू, रोहित सांधू, रितेश सांधू, शिक्षा सांधू, प्रतीक्षा सांधू और मेक्स जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूँगी श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, एक मुलाकात जरूरी है सनम। फरमाइश करता

दोस्तों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है मुगलपुरा बागपत से। फिल्म का नाम है मोहब्बते, गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। फरुखाबाद यूपी से सूरज चौरसिया, सरोज चौरसिया जी। ये ताला महाराष्ट्र से है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जी। कालेगांव जफराबाद से है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संकीच वायाल, प्रतिमेश देशमुख, पड़ाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षरा देशमुख। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। नेहरू चौक पैठन से हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती प्रजा प्रसाद, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जलाना शर सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। इसी बीच भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मलकापुर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथियों, नाम गीत के बोल है चिट्ठी आई है। फरमाइश करता जुड़ रहे शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सपल धाड़े, अजय खिरोड़कर। इसी बीच हमारे और भी दोस्त दादीगेट भिवानी से हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी दोस्त जुड़ रहे खेल बाजार पानीपत से हैं, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडूकोल मल्होत्रा, ननक चल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, कोयल सिक्का। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहि चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद शेख, नजर नाशिद, शाजिद शाहिद। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल, जैनब मुजावर जी। जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू जी। जाखोत राजस्थान से शंभुलाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले। पुणे वाले पुणे से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका, विशाखा सोनवाने जी। मालवा बेड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। कुम्भार गली गोल गांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चार, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्हार जी। गंजुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही। श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार। पुनावले से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, शायसा सोनवानी जी। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना अक्सर, नाजमा, आफिया और इब्राहिम जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है चिट्ठी आई है।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बेवफा, गीत के बोल हैं एक दिलरुबा है। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवितन वी, लक सोहिनी, मोहनितिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी बीरशहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोल, बीपी कुल थे और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मदनसारी, गुलाम शाह भी रही महराज जहां। इसी बीच श्रोता साथी और भी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को, जुड़ रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुनू, रजना, बदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। लगन पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल, भारती बघेल। महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार जी, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़ और हरीश कुमार जी। अम्बाला से जुड़ना चाह रहे रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मनत, किरत और गुरशब्द सिंह राहुल। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं बक्सर बिहार से सबरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनामदीपा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से हैं सदानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। साथी जुड़ रहे हैं कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। पटेल नगर मलोद से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, किदरनी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राधा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी, रिधान खुराना जी। भवानी नगर पेठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवर्धन, अशोक धोंगड़े, राशि कार्तिक, परी धोंगड़े जी। धनौरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयन बापू जी। छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग जी, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिलरुबा है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है एकता कॉलोनी रोहतक से। फिल्म का नाम है कुदरत। गीत के बोल हैं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। इस गीत की फरमाइश करता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। इसी बीच जुन्नाचार्य छत्तीसगढ़ मदनपुर से, श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से, किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू वड़तकर। इसी बीच जुन्नाचार्य मॉडल ट्यून कर्नल से, सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, किरण शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से, श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविका जी कीटे। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं टाउन से, जुबेद अली खान, सबिहा जुबेर, अनुमन जी। इस गीत के अनुरोध करता है दुलापर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस खातून जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है झारखंड से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आवरपुर से शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फिजा शेख, फारूक शेख, वसीम शेख, अफसाना, अश्मीरा जी, इफरान शेख और भी साथी जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, चंपा शाहू, राहुल जी शाहू। इस गीत की अनुरोध करता है हनुमानगढ़ से भाई प्रेम सिंह, सुखवीर जी, काजल, लखवीर सिंह, कृष्णा, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला जी, निशाना और अनमोल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे अस्तु जिलापुरा महू से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ रहे हैं आजाद अली अनवर, रजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आजाद। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पलेरा छत्तीस, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल ही कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत, चेतन जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बदायूं सिंह, इशरत खान, शायरा बेगम, रफ्यू खान, शहबाज खान, फैजाद खान, इशाद खान, अरमान खान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबली पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। इसी बीच जुड़ना चाह रही है मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इस गीत के अनुरोध करता है डापकी रोड अकोला से शिशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान जी अब्बासी, अबान जी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं शंकर, दीपाली और कविता जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तू मुझे कबूल।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है कलाकार, गीत के बोल ही नीले नीले अंबर पे। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है प्रवीण हांगोणी। योगिता, प्रणाली, पार्थ और हांगोणी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। इस गीत की अनुरोध करता है पथरोड से विजय अंबाडकर, सुनीता अंबाडकर, अक्षय अंबाडकर, राधिका अंबाडकर, ऋषिकेश जी अंबाडकर इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुषी श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। पटियाला दुर्ग से संजय शाहू, सुजिता शाहू, शशंक शाहू, सीमा जी शाहू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंजाब से। फिल्म का नाम है दिलवाले, गीत के बोल ही जीता था जिसके लिए। इस गीत की फरमाइश करता है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाटिल, जयपाल यादव, विनोद पुरी जी। बरकाकाना से जुड़ना चाह रहे हैं अफ्ताब ताज, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी साहिनी, अफ्ताब मलिक जी। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं पंकज आर्या, प्रियंका बेटी जी वाड़ोदे। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रसाद प्रकाश जी। संभाजीनगर महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रांजक्या वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना गुड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन जी शेंडे। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जीता था जिसके लिए। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है इज्जत, गीत के बोल ही क्या मिलेगी ऐसे लोगों से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीनिवास, रंजन शाहू जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है यूपी से सूरज चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा चौरासिया, शिवानी चौरासिया, पवन घोड़, योगेंद्र नायक कासगस जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश जी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, अमजल अली, लाडली बीबी निशा और उनके सभी मित्र। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं क्या मिलिए ऐसे लोगों से। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे क्या मिलिए ऐसे लोगों से। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है डुमराव से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। गीत के बोल हैं सुन साहिबा सुन। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है राजेडी अंसारी, नरसी अंसारी, वसीम अंसारी जी, वल्लीउल्ला अंसारी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं अजीम वक्कार। लाहौरा से जुड़ रहे हैं प्रभाव, रानी बेलदार, रानी दुर्गा बेलदार और शंकर देव बेलदार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, योगेश सतीश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बालोद से कमलेश जयपुरिया। लोनी से जुड़ना चाह रहे हैं नसीमुल इस्लाम नोरीन, प्रकाशवीर राजपूत जी। खड़वा से जुड़ रहे हैं पिंकी मिंकी चिंकी और रिंकी जी। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र, कुमकुम मिश्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। भलाई से जुड़ना चाह रहे हैं बिगम अनुश्री प्रदीप, राजश्री, प्रमिला प्रदीप। राजगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं जानवी डोमिन, पिंकी और दीपा डोमिन जी। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जू प्रभा, रानी बेलदार। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं उमा राज, जगदीश राज। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुटवारा से। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, गीत के बोल हैं मैंने पूछा चांद से। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़हीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद याशीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू गोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही है पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, भाविका सिक्का और डिग्गू जी सिक्का। बोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ना चाह रहे हैं नेहा जैन, दीपक मयंग मुनर, चेतन नाहेटिया, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुनर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल सी, उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्ने, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अबीर जी। कानपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीओ और दिया जी चौरासिया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैंने पूछा चांद से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत ही। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं तनाव नहीं सही रणनीति से मिलेगी सफलता। कशिश, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर जीवन की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर जगह आगे बढ़ने की होड़ दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: इस होड़ में अक्सर इंसान ये मान बैठता है कि जितना अधिक तनाव होगा उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। तनाव न तो सफलता की गारंटी है और न ही परिश्रम का प्रमाण। सफलता का रास्ता श्रोताओं तनाव से होकर नहीं बल्कि सही रणनीति, स्पष्ट सोच और संतुलित प्रयासों से होकर गुजरता है। आज के इस कार्यक्रम से हम यही जानने वाले हैं कि तनाव नहीं सही रणनीति से ही सच्ची सफलता हमें मिलती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि तनाव से नहीं सही रणनीति से मिलती है सफलता विषय पर। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले भी बताया था कि आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में सफलता की इच्छा हर कोई व्यक्ति अपने मन में रखता है।
1: जी हाँ,
0: चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य होता साथी हो, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अधिक तनाव लेने से ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। तनाव व्यक्ति की सोच को संकुचित करता है जबकि सही रणनीति उसे स्पष्ट दिशा देती है।
1: जी हाँ,
0: देखा जाए तो वास्तव में सफलता का रास्ता तनाव से नहीं बल्कि सुविचारित रणनीति से होकर ही गुजरता है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि तनाव मन की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति भविष्य की चिंता, असफलता का डर या अपेक्षाओं के बोझ से दबा हुआ महसूस करता है। श्रोताओं, हम देखते हैं कि जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते हैं, समय प्रबंधन कमजोर होता है या स्वयं पर अत्यधिक दबाव बनाया जाता है, तब तनाव जन्म लेता है। समाज की तुलना, परिवार की उम्मीदें और स्वयं से की गई अव्यवहारिक अपेक्षाएं भी तनाव को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में लोग परिणाम पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कशिश, की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। यही भूल तनाव का सबसे बड़ा कारण बनती है।
0: जी हाँ,
1: जब इंसान केवल क्या पाना है पर सोचता है और कैसे पाना है पर नहीं, तब तनाव स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, अगर बात करें तो तनाव व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। अत्यधिक तनाव में व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर भी घबरा जाता है और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि कई बार तनाव के कारण सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आत्मविश्वास व्यक्ति का डगमगा जाता है, कार्य क्षमता इससे प्रभावित होती है और गलत फैसलों की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में साथियों सफलता जो है वो दूर होती चली जाती है। हम देखते हैं कि रणनीति का मतलब होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए पहले से ही सोच समझकर बनाई गई योजना से। जैसे कि रणनीति व्यक्ति को यह स्पष्ट करती है जागृति जी कि उसे करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है।
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छी रणनीति व्यक्ति को तनाव से तो बचाती ही है क्योंकि उसे हर कदम पर स्पष्टता मिलती रहती है। साथियों, हम देखते हैं कि जब रास्ता साफ होता है तो डर और भ्रम अपने आप कम हो जाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि एक आम धारणा ये है कि जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है वो गंभीर है और वही सफल होगा, लेकिन इतिहास और व्यवहारिक जीवन हमें कुछ और ही सिखाते हैं श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: अत्यधिक तनाव व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में होता है जिसमें दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तनाव व्यक्ति की रचनात्मकता, एकाग्रता और आत्मविश्वास को कमजोर करता है श्रोताओं, और जो मन शांत नहीं वह सही दिशा में सोच नहीं सकता।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में सफलता की राह और भी कठिन हो जाती है। इसीलिए साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि ये समझना बहुत जरूरी है कि तनाव मेहनत का पर्याय नहीं है बल्कि ये गलत दिशा में किए गए प्रयासों का संकेत हो सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि तनाव से नहीं सही रणनीति से हम अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, तो ये बातें ऐसे आगे और भी जरूर जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।
2: टूटा टूटा

0: आएगा।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, तनाव नहीं सही रणनीति से मिलेगी सफलता, और कुछ बातें हमने गीत से पहले करी भी थी। जैसा कि श्रोता साथियों, रणनीति का अर्थ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सोचा समझा व्यवस्थित और व्यवहारिक तरीका है।
2: बिल्कुल,
1: सही रणनीति वो होती है जो व्यक्ति की क्षमताओं, संसाधनों और परिस्थितियों के अनुरूप हो। इसमें तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण है। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सही योजना होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। श्रोताओं, जहाँ तनाव व्यक्ति को जकड़ देता है, वही रणनीति उसे दिशा देती है। तनाव अधिकतर भावनाओं से जुड़ा होता है कशिश, डर, चिंता, असुरक्षा। इसके विपरीत जो रणनीति होती है वो तर्क और विवेक पर आधारित होती है।
2: बिल्कुल।
1: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जब व्यक्ति भावनात्मक दबाव में काम करता है तो छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता है, लेकिन रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर सफलताओं को सीखने का अवसर मानता है।
2: बिल्कुल,
1: रणनीति व्यक्ति को समझने में मदद करती है कशिश कि हर लक्ष्य तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजें समय मांगती है। ये समझ तनाव को कम करती है और धैर्य को बढ़ाती है।
2: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, अगर बात करें तो देखते हैं कि सही रणनीति बनाने के लिए कुछ बातें हमें समझने की जरूरत होती है, जैसे कि लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण होना जरूरी है, साथ ही समय का सही प्रबंधन भी जरूरी है, और विकल्पों पर विचार करना भी जरूरी है जागृति जी। क्योंकि जब व्यक्ति इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है तो उसे तनाव लेने की आवश्यकता बनी ही नहीं रहती। दोस्तों, हम देखते हैं कि तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी भरा हो सकता है, जबकि रणनीति धैर्य और विवेक से बनती है। हम देखते हैं जागृति जी कि जो व्यक्ति हर समस्या पर शांत रहकर सोचता है वह परिस्थिति को अवसर में बदल देता है।
1: जी हाँ।
2: और वहीं तनावग्रस्त व्यक्ति समस्या को और भी बड़ा बना लेता है। साथियों, अगर बात करें कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में रणनीति की क्या भूमिका होती है, तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो योजनाबद्ध अध्ययन से बिना घबराए अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथियों, वहीं नौकरी में काम की प्राथमिकता तय करने से दबाव कम होता है। व्यवसाय में अगर बात करें तो सही रणनीति नुकसान को भी सीख में बदल देती है।
1: जी हाँ।
2: और वहीं व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को समझदारी से संभालने में रणनीति हमारी सहायक होती है। दोस्तों,
1: बिल्कुल,
2: एक तरीके से देखा जाए जागृति जी तो यह हर क्षेत्र में स्पष्ट हो जाता है कि रणनीति व्यक्ति को संतुलित रखती है जबकि तनाव उसे कमजोर करता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि सही रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समय प्रबंधन है। समय को लेकर लापरवाही तनाव को जन्म देती है। जब काम अधूरा रह जाता है और समय निकल जाता है तब घबराहट बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाकर चलता है उसे आखिरी समय की हड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ता।
2: बिल्कुल,
1: समय प्रबंधन ये सिखाता है कशिश कि हर काम का सही समय होता है और सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। यही सोच तनाव को नियंत्रण में रखती है।
2: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने तनाव को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने दिया। उन्होंने परिस्थितियों को समझा है जागृति जी, रणनीति बनाई और धैर्य के साथ आगे भी बढ़े हैं। दोस्तों, उनकी सफलता का रहस्य मेहनत के साथ साथ सही सोच और सही योजना रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि समस्या को बोझ नहीं चुनौती की तरह हमें देखना चाहिए। हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए। असफलता को रणनीति सुधारने का अवसर माने दोस्तों, और आत्मसंयम और धैर्य को अपनी शक्ति बनाकर रखें। क्योंकि जागृति जी, तनाव व्यक्ति को तोड़ता है जबकि रणनीति उसे मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ,
2: सफलता उसी को मिलती है साथियों जो शांत मन से सोचकर सही दिशा में योजनाबद्ध कदम उठाता है। क्योंकि जीवन की हर दौड़ में जीत उसी की होती है जो तनाव नहीं बल्कि रणनीति को अपना साथी बनाए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि मानसिक संतुलन सफलता की आधारशिला है। जब मन शांत होता है तभी रणनीति प्रभावी बनती है। ध्यान, योग, आत्मचिंतन या प्रकृति के साथ समय बिताना,

0: सारी चीजें मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। रणनीतिक सोच तभी विकसित होती है जब व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करता है।
1: बिल्कुल,
0: शांत मन समस्याओं को चुनौती की तरह देखता है, बोझ की तरह नहीं। श्रोताओं, असफलता को लेकर हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम तनाव में जाएंगे या रणनीति बनाएंगे।
1: जी,
0: यदि असफलता को अंत मान दिया जाए कशिश, तो तनाव निश्चित है। लेकिन यदि उसे सीख का माध्यम माना जाए तो वही असफलता अगली सफलता की नींव बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: रणनीति ये सिखाती है कि हर असफलता ये बताने आती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल नहीं। यही सोच तनाव को आशा में बदल देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताएं तो तनाव से नहीं, समझदारी से आगे बढ़िए, क्योंकि सही रणनीति ही सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी है। हम देखते हैं कि जब स्पष्ट प्राथमिकताएं होती हैं जो तनाव को स्वतः ही कम कर देती है, यानी कि जागृति जी, जब व्यक्ति ये तय कर लेता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो अनावश्यक दबाव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। साथ ही रणनीति व्यक्ति को नियंत्रण का एहसास कराती है। साथ ही जब हालात हमारे नियंत्रण में महसूस होते हैं तब मन स्थिर रहता है और निर्णय बेहतर होते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती है साथियों, इसलिए जड़ रणनीति नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाली सोच सफलता दिलाती है।
0: बिल्कुल,
1: हम अगर बात करें तो भावनाओं पर नहीं तथ्यों पर आधारित योजना सफल होती है, क्योंकि भावनात्मक निर्णय अक्सर तनाव बढ़ाते हैं जबकि तथ्य आधारित रणनीति स्थायित्व लाती है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम हमारे श्रोता साथियों से इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमें यही समझना सबसे जरूरी है कि जीवन कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसे घबराहट में पास किया जाए। जीवन एक यात्रा है जिसे समझदारी, धीरे और सही रणनीति के साथ तय किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तनाव उस धुएं की तरह है जो हमारी आंखों के सामने छा जाता है और हमें रास्ता दिखना बंद हो जाता है।
1: जी,
0: वही रणनीति उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जल्दी के चक्कर में हम अपने मन पर अनावश्यक दबाव बना लेते हैं। ये दबाव धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है श्रोताओं, और वही तनाव हमारी क्षमताओं को सीमित कर देता है।
1: जी हाँ,
0: हम जितना सोच सकते थे उससे कम सोच पाते हैं, जितना कर सकते थे उससे कम कर पाते हैं। ऐसे में असफलता नहीं बल्कि हमारी जल्दबाजी और अव्यवस्थित सोच हमें पीछे खींच लेती है।
1: बिल्कुल,
0: सही रणनीति हमें ये सिखाती है कि हर लक्ष्य का एक क्रम होता है, हर सपने की एक प्रक्रिया होती है और हर सफलता का अपना समय होता है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तब मन शांत होने लगता है। शांत मन में विचार स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट विचारों से ही मजबूत निर्णय जन्म लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही निर्णय आगे चलकर सफलता की नींव बनते हैं कशिश। और श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि यह भी याद रखना चाहिए कि तनाव हमें थका देता है लेकिन रणनीति हमें मजबूत बनाती है। इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी जीवन में दबाव महसूस हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं तनाव में उलझ रहा हूँ या रणनीति बना रहा हूँ।
1: बिल्कुल,
0: जिस दिन ये सवाल आपकी आदत बन जाएगा उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा सचमुच शुरू हो जाएगी।
1: जी
0: याद रखिए श्रोताओं, सफलता उन कदमों से नहीं मिलती जो डर में उठाए जाते हैं, सफलता उन कदमों से मिलती है जो सोच समझकर सही दिशा में बढ़ाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तनाव रास्ता रोकता है, रणनीति रास्ता बनाती है, और जो व्यक्ति कशिश रास्ता बनाना सीख लेता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब हम देख भी रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी दोस्त जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जाऊ है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हां श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना हाजिर हो जाते हैं सोमवार से शनिवार कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। तो आज भी श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे ही एक नए विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है वो हमारे बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे अच्छी आदतों को लेकर। तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों हमारी आपसे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए शुरुआत में पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारा आपसे बातचीत के लिए एक नया विषय रहने वाला है, अच्छी आदतों को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो उन्हें बचपन से ही अच्छी आदतें सिखानी बहुत जरूरी होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक रेडियो नाटक के माध्यम से हम यही समझेंगे श्रोता साथियों कि हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखा सकते हैं और अच्छी आदतों से हमारे बच्चे किस प्रकार से नई नई चीजों को सीखते हैं और उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं, ऐसी ढेर सारी बातें हम आगे कार्यक्रम में जानेंगे। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं एक प्यारा सा रेडियो नाटक जिसमें दो सहेलियां बात कर रही है, रीना और टीना।
1: वाह, कितना सुंदर मौसम है। सुबह सुबह उठकर टहलने का मजा ही कुछ और है। थोड़ा व्यायाम कर लेती हूँ, फिर पढ़ाई भी करूंगी।
2: अरे रीना, तुम फिर सुबह इतनी जल्दी उठ गई, मुझे तो अभी और सोना है।
1: टीना, सूरज निकल आया है, सुबह जल्दी उठना भी अच्छी आदत है।
2: लेकिन मुझे तो देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है।
1: पर क्या तुम्हें पता है, इससे दिन का काफी समय निकल जाता है। सुबह का समय पढ़ाई और नई चीजें सीखने का सबसे अच्छा समय होता है।
2: मुझे तो लगता है कि एक घंटा और सो लूं। पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आती है।
1: टीना, अगर यही एक घंटा अच्छे काम में लग जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है।
2: अरे, मेरी हिंदी की कॉपी कहाँ गई? मेरा पेन भी नहीं मिल रहा।
1: टीना, तुमने सामान सही जगह पर रखा था?
2: नहीं, कल तो मैंने जल्दी जल्दी में कहीं रख दिया था।
1: देखो, मैं रोज रात को अपना बैग तैयार कर लेती हूँ, इसलिए सुबह कोई परेशानी ही नहीं होती।
2: सच में मुझे रोज इसी बात की परेशानी होती है, मैं हमेशा जल्दी जल्दी में अपने सामान इधर उधर रखकर भूल जाती हूँ, और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है।
1: देखा टीना, अच्छी आदतें हमें परेशानी से बचाती हैं और हमारा समय भी बचाती हैं।
2: सही कह रही हो तुम। रीना, तुम्हें हर सवाल का जवाब कैसे याद रहता है?
1: क्योंकि मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ।
2: अच्छा, मुझसे तो होती ही नहीं है पढ़ाई, मैं तो परीक्षा आने पर ही पढ़ती हूँ।
1: हाँ टीना, यही कारण है रोज थोड़ा पढ़ना आसान होता है, जबकि आखिरी समय में सब याद करना कितना मुश्किल लगता है।
2: सही कह रही हो तुम, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। लगता है मुझे अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। देखो ना, तुम सुबह भी जल्दी उठ जाती हो, ये भी तुम्हारी अच्छी आदत है। तुम समय पर स्कूल के लिए तैयार होकर अपने सामान भी व्यवस्थित तरीके से ले आती हो, और मैं हमेशा इन सारी चीजों को लेकर परेशान होती हूँ। रीना, आज लंच में क्या लाई हो तुम?
1: मैं तो आलू की सब्जी और पराठे लाई हूँ।
2: अच्छा, मैं तो आज फिर से चिप्स लाई हूँ।
1: ओ,
2: लेकिन तुम ये आलू और पराठा कैसे खा लेती हो? चिप्स खाने में कितना मजा आता है।
1: टीना, ये चिप्स वगैरह खाना कभी कभी ठीक होता है, लेकिन रोज नहीं। हमारे शरीर को ताकत देने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है।
2: हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। मेरी मम्मी भी मुझे अक्सर अच्छे खाने के लिए बोलती रहती है, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। मैं हमेशा चिप्स और बाहर की चीजें ही खाती हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों से अब समझ में आ रहा है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन जरूरी होता है।
1: टीना, चलो कबड्डी खेलते हैं।
2: नहीं नहीं, मैं तो अभी मोबाइल चलाऊंगी।
1: टीना, तुम तो दिन भर मोबाइल ही देखती रहती हो,
2: उसमें मुझे बहुत मजा आता है।
1: लेकिन टीना, मैदान में खेलने से हमारा शरीर है वो मजबूत होता है, नए दोस्त बनते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
2: लेकिन मुझे तो दौड़ने में बहुत आलस आता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ।
1: टीना, शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता।
2: रीना, मैंने तुम्हारी बात मानना शुरू कर दी है।
1: क्या सच में टीना? तो फिर तुमने क्या क्या बदला?
2: देखो, जैसा कि आज तुम बोल रही हो कि अपन कबड्डी खेलें, तो मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने आ रही हूँ। और अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, अपना बैग व्यवस्थित रखूंगी, रोज पढ़ाई भी करूंगी और जंक फूड कम खाऊंगी।
1: बहुत बढ़िया, अब कैसा महसूस हो रहा है?
2: पहले से कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अगर तुम्हारी बात मानूंगी तो मुझे लगता है कि मेरा मन जो है वो हल्का हो जाएगा और मैं फिर से नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन जी पाऊंगी। दोस्तों, मैंने अपनी जो फ्रेंड है रीना, उससे सीखा कि आलस, समय की बर्बादी और लापरवाही हमें पीछे ले जाती है।
1: और समय की पाबंदी, नियमित पढ़ाई और स्वस्थ भोजन, साथ ही साफ सफाई और खेल कूद हमें आगे बढ़ाते हैं।
2: कहते हैं ना रीना, कि अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से हमारी पहचान जरूर बन जाती है।
1: इसलिए याद रखिए कि आज की अच्छी आदतें कल का उज्जवल भविष्य बनाती हैं।
2: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने रीना और टीना के संवाद को सुना, और जैसा कि बहुत ही प्यारा सा रेडियो नाटक था जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि उनके जीवन में अच्छी आदतों का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे बच्चे जंक फूड के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता, लेकिन इस रेडियो नाटक के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि हमें अपने बच्चों को घर के खाने के फायदों के बारे में बताना चाहिए और साथ ही बाहर के जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए। तो जैसा कि आज इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं साथियों, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। साथियों, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों। साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ।

0: किस जमीन हूँ और माटी तक किस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया वो फसल बहाई वो श्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार के नती सूरी जन्म तक इस हकदार है कानून आ बात मानी है न पढ़ना पूटे न हक को ले सके न रिवाज और सच में बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याद

0: रक्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ थाय
2: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
1: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाइयों बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाइयों बहनों, जरूर है ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोले में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्होंने रक्षा करे हैं। तो आओ बोलने की भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोलनी आवाज विकास में असली पहचान है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने वाले हैं जो कि हमारे गांव, हमारे समाज और हमारे भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: विषय है स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास। अक्सर अंजलि हम विकास की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और बड़े उद्योग हमें विकास के प्रतीक दिखाई देते हैं, लेकिन श्रोता साथियों, कभी हमने सोचा है कि विकास की सबसे मजबूत नींव हमारे अपने गाँव, अपने खेत और अपने जंगल, अपने जल स्रोत, अपनी स्थानीय प्रतिभाओं में छिपी हुई है।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग ही स्थानीय विकास का सबसे सशक्त मार्ग है। जब गांव अपने संसाधनों के बल पर आगे बढ़ता है अंजलि, तब विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाल बनकर उतरता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने

0: वाली है स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि स्थानीय संसाधन की बात करें तो श्रोता साथियों, स्थानीय संसाधन वे साधन है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं या वहाँ के लोगों की कला, ज्ञान और कौशल के रूप में मौजूद होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि भूमि, जल, वन, खनिज, पशुधन, स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक ज्ञान, मानव श्रम और कौशल। यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी क्षेत्र का विकास बाहरी सहायता पर कम निर्भर हो सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विकास की पहली सीढ़ी है अपने संसाधनों को पहचानना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम दूरी की चीजों में तो अवसर खोजते रहते हैं जबकि अवसर हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। किसी गांव की उपजाऊ जमीन, किसी क्षेत्र का जंगल, किसी समुदाय का पारंपरिक ज्ञान या किसी व्यक्ति का हुनर भी एक संसाधन है।
0: जी हाँ,
1: यदि हम जागृति जी अपने संसाधनों को पहचान ले तो हम देखते हैं कि हम कई तरीके से विकास में सहयोग कर सकते हैं। और बहुत सी बार हमारे साथ ये होता है कि हमारे स्थानीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पहचान करना, जिनकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमें उनकी पहचान नहीं होती है तो हम देखते हैं कि हम उन सारी चीजों के लिए कहीं दूर जाते हैं और वहां जाकर हम कई परेशानियां झेलते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम स्थानीय स्तर पर हमारे जो आसपास के संसाधन है उनका क्या उपयोग हो सकता है, किस तरीके से उन्हें काम में लिया जा सकता है, उसकी पहचान करना शुरू करें।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो विकास बहुत अच्छे से गांवों का हो पाता है।
0: जी हाँ अंजलि, एक छोटा सा संवाद है जो हमारे श्रोता साथियों के साथ हम करना चाहेंगे। संवाद में दो पात्र है जैसे कि रमेश और मोहन। रमेश कहता है कि भाई विकास के लिए तो बड़े उद्योग और बड़ी पूंजी चाहिए। तभी मोहन कहता है कि जरूरी नहीं है, अगर गांव के लोग अपने खेत, पानी, जंगल और हुनर का सही उपयोग करेंगे तो विकास की शुरुआत वहीं से हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तभी अंजलि रमेश कहता है कि मतलब अपने संसाधनों को पहचानना ही पहला कदम है ना। तब मोहन बोलता है बिल्कुल, जो हमारे पास है उसी से आगे बढ़ना ही असली समझदारी है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि स्थानीय विकास का अर्थ केवल भवन निर्माण नहीं है, इसका मतलब है कि क्षेत्र के लोग अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। जब गांव के लोग स्वयं अपने विकास की योजना बनाते हैं, उनमें भागीदारी रखते हैं और उनका लाभ लेते हैं तो वास्तविक विकास होता है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय विकास लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं जो है वो घर पर ही कई अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाती हैं और उनको बाजार में जाकर बेचती हैं, तो उससे वो अपनी आत्मनिर्भरता की ओर एक पहला कदम बढ़ा रही हैं। उसी तरह आज महिलाएं बीज भंडारण करती हैं, सब्जी के लिए पोषणवाड़ी करती हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजों में महिलाओं का रुझान जो है वो बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और इसी तरह जो युवा साथी है वो भी अगर सोचे कि स्थानीय स्तर पर क्या ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से मैं रोजगार प्राप्त कर सकता हूँ, तो इन सारी चीजों को सोचने की हमें जरूरत है, तभी हम देखेंगे कि स्थायी विकास संभव हो पाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम स्थानीय विकास की बात कर रहे हैं तो स्थानीय विकास की भी बहुत सारी चुनौतियां होती है, जैसे कि संसाधनों की सही जानकारियों का अभाव होता है, तकनीक ज्ञान की कमी होती है, बाजार तक पहुंच की समस्याएं हो जाती है, जल और पर्यावरण का क्षरण हो जाता है और युवाओं का पलायन। लेकिन श्रोताओं, यदि समाज, प्रशासन और नागरिक मिलकर काम करे तो इन चुनौतियों का अवसर में बदला जा सकता है। सच्चा स्वराज केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, ये आत्मनिर्भरता, सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना है। जब अंजलि हम अपने गांव, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उनका उपयोग सामूहिक हित के लिए करते हैं, तब सच्चे स्वराज की भावना मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: स्थानीय विकास हमें सिखाता है कि प्रगति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से पैदा होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि स्थानीय स्तर की जो चीजें हैं उन्हें हम बढ़ावा कैसे दें जिससे स्थानीय विकास संभव हो पाए, तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं जागृति जी श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि गांवों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है। जब गांव में रोजगार, शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो लोगों को अपना घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय विकास केवल आर्थिक नहीं होता बल्कि सामाजिक स्थिरता भी प्रदान करता है। यह परिवार को एकजुट रखता है और गांवों की जो चीजें हैं उन्हें बनाए रखता है। आज अगर सभी लोग रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर चले जाएंगे तो जो गांव है उसकी प्रकृति, पर्यावरण और कई सारी जो चीजें हैं वो बेरुखी हो जाएंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्थानीय स्तर पर रहकर ही कई ऐसे रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं जिससे हमारे गाँव की जो चीजें हैं वो बरकरार रहे और गांव अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाए।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्थानीय विकास का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे विकास का लाभ सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचता है। जब किसी गांव या क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग वहीं के लोगों के हित में होता है तो रोजगार बढ़ता है, आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर सुधरता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय विकास लोगों में आत्मविश्वास पैदा करता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे ये भावना मजबूत होती है कि विकास बाहर से नहीं आएगा बल्कि हम स्वयं अपने विकास के निर्माता बन सकते हैं। यही भावना आत्मनिर्भरता की नींव है। स्थानीय विकास सामाजिक एकता को भी मजबूत करती है क्योंकि इसमें लोगों की सहभागिता और सामूहिक प्रयास शामिल होते हैं। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आज बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है।
0: जी जी,
1: लाखों युवा रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। यदि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए अंजलि, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हम पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कृषि आधारित उद्योग, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये सब मजबूत बनाते हैं। इससे हमारे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलता है और पलायन की समस्या भी कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार ज्यादा स्थायी और समावेशी होते हैं क्योंकि इनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है। कहा भी गया अंजलि कि स्थानीय रोजगार का अगर विस्तार होगा तभी गांव का सच्चा उद्धार होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी का सपना था कि गांव आत्मनिर्भर बने। सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और जन भागीदारी की भावना है।
1: बिल्कुल,
0: जब गांव अपने संसाधनों का संरक्षण करता है, उनका न्यायपूर्ण उपयोग करता है और विकास के लाभ सभी तक पहुंचाता है, तब सच्चे स्वराज की स्थापना होती है। जागृति जी, यदि किसी पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो वह आंधियों का सामना कर सकता है, उसी प्रकार यदि किसी समाज की जड़ें मजबूत हो तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी जड़ें हैं हमारे स्थानीय संसाधन, हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारा श्रम और हमारा ज्ञान, यही हमारी असली ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: विकास की शुरुआत हमेशा अपने आसपास से होती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमें अपने काम, अपने क्षेत्र, अपने संसाधनों पर विश्वास करना होगा। इसलिए हम सभी को मिलकर संकल्प लेना है कि हम जल बचाएंगे, वनों की रक्षा करेंगे, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे, महिलाओं और युवाओं को अवसर देंगे और अपने संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोताओं को हम ये कहना चाहेंगे कि हर क्षेत्र की अपनी कला, संस्कृति और परंपराएं होती है। ये केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं बल्कि आर्थिक विकास का माध्यम भी बन सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कह रहे हैं कि हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य, बुनाई, मिट्टी कला और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन के माध्यम से भी स्थानीय संस्कृति को आर्थिक अवसरों से जोड़ा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्थानीय कला और संस्कृति का संरक्षण विकास को एक मानवीय और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करता है अंजलि। स्थानीय विकास में महिलाओं की भूमिका भी होती है। महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी किया है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बिना स्थानीय विकास की कल्पना भी अधूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जिस गाँव ने अपने संसाधनों को पहचाना उसने अपने भविष्य को संवार लिया और जिस समाज ने अपनी ताकत को समझा उसने विकास का नया इतिहास रच दिया।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें भी हमारे जो आसपास संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब उन्हें हम पहचान लेंगे तो हमारे गांव की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, विकास तभी सार्थक है जब पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखे। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन श्रोताओं अल्पकालिक लाभ तो दे सकता है लेकिन दीर्घकाल में ये विनाशकारी भी सिद्ध होता है।
0: जी जी,
1: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकास केवल एक विकास मॉडल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज की आधारशिला है। ये विकास का ऐसा मार्ग है जो लोगों को उनके संसाधनों, संस्कृति और पर्यावरण से जोड़ता है। इससे रोजगार बढ़ता है, पलायन कम होता है, महिलाओं और युवाओं को अवसर मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
0: जी हाँ,
1: आज आवश्यकता इस बात की अंजलि जी कि हम अपने गांव, अपने कस्बों, अपने क्षेत्रों की शक्ति को पहचाने। विकास की शुरुआत हमेशा श्रोताओं अपने आसपास से ही होती है। यदि हम अपने स्थानीय संसाधनों का सम्मान और संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्थानीय संसाधनों को पहचान कर उनका संरक्षण करें और उनका सदुपयोग करें। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है, यही समृद्धि का आधार है और यही सच्चे विकास की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव हम कैसे करें।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही समय पर सही भोजन करने से भी अच्छा रहता है। प्रकृति हर मौसम में अलग अलग फल, सब्जियां और अनाज उपलब्ध कराती है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि श्रोता साथियों, हमारे शरीर की आवश्यकताएं भी मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि हम मौसम के अनुरूप अपने खान पान में बदलाव करें तो कई बीमारियों से बच सकते हैं और शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग प्रतिरोधक बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि सही समय पर सही भोजन करने से अच्छा रहता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आजकल लोग हर मौसम में एक जैसा भोजन करने लगे हैं। ठंड में ठंडी चीजें, गर्मी में तला भुना भोजन और बरसात में अस्वच्छ खाद्य पदार्थ खाने की आदत के कारण श्रोता साथियों स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मौसम के साथ साथ हमारी थाली भी बदलनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि मौसम और शरीर का आखिरकार गहरा संबंध किस तरीके से है।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर काम करता है। गर्मी में शरीर को ठंडक और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सर्दी में शरीर को गर्माहट और अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। बरसात में पाचन शक्ति कुछ कमजोर हो सकती है, इसलिए हल्का और स्वच्छ भोजन लाभदायक होता है।
0: जी हाँ।
1: यदि श्रोता साथियों हम मौसम की जरूरतों को समझकर भोजन करें तो शरीर संतुलित रहता है और बीमारियों का खतरा भी कम होता है। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि हर मौसम में खान पान बदलना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी क्यों होता है तो श्रोता साथियों, इससे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता बदलती है। पाचन शक्ति हर मौसम में समान नहीं रहती है, इसलिए खाने में बदलाव करना भी जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: मौसम के अनुसार संक्रमण और बीमारियों का खतरा अलग अलग होता है। शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है और सही भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हर मौसम में हमें खान पान बदलने की जरूरत होती है। बहुत सी बार हम बच्चों को या किसी व्यक्ति को समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो वो हमसे ये सवाल करते हैं इससे क्या होगा, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हर मौसम में खान पान के जो तौर तरीके हैं वो बदलने की जरूरत है। अगर हम ठंड के मौसम में ज्यादा ठंडी चीजें खाएंगे तो इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव अवश्य हमें देखने को मिलेगा।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि गर्मियों के मौसम में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में शरीर से अधिक पसीना निकलता है जिससे पानी और खनिज लवण की कमी हो सकती है। इसीलिए ऐसा भोजन हमें करना चाहिए जो हमारे शरीर को ठंडक और पर्याप्त पानी दे। श्रोता साथियों, गर्मियों में आप तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी, साथ में नींबू, छाछ और दही, नारियल पानी, मौसमी फल, हरी सब्जियां, इन सभी का सेवन आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि हम ये सारी चीजें जो खाते हैं उनके साथ हमें कुछ चीजों की सावधानी भी रखनी चाहिए। तो श्रोता साथियों, आप बहुत अधिक तला भुना भोजन खाने से गर्मियों के मौसम में बचे, अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन न करें और बार बार गर्मी के मौसम में अंजलि जी हमें ठंडे पेय भी नहीं पीने चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मिठाइयों का सेवन न करें। साथ ही श्रोता साथियों, लंबे समय तक रखा हुआ भोजन भी हमें नहीं खाना है, जिससे हम देखते हैं कि गैस और अपच जैसी समस्याएं वो बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर मौसम में हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक चीजें हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हमें गर्मियों में पानी के महत्व को भी समझना है। श्रोता साथियों, गर्मी में केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना जरूरी नहीं है, बल्कि समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। इससे हम देखते हैं कि शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, थकान कम होती है, त्वचा स्वस्थ रहती है, कब्ज की समस्या नहीं होती है और शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बरसात के मौसम में भी हमें अलग तरीके के भोजन करने की जरूरत है। बरसात का मौसम जो होता है उसमें बैक्टीरिया और वायरस तेजी से बढ़ते हैं। इस मौसम में मनीषा स्वच्छ और ताजा भोजन करना सबसे जरूरी है।
0: हाँ।
1: बरसात में हमें ताजा बना भोजन, अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां, मूंग की दाल, दलिया, सूप, अदरक लहसुन का सीमित उपयोग करना चाहिए और हल्दी वाला भोजन हमें करना है। और हमें खुले में मिलने वाले जो भोजन होते हैं, फास्ट फूड और पैकेट्स बंद वाले, उनसे दूरी बनानी है।
0: जी हाँ।
1: कटे हुए फल और सब्जियां नहीं खानी है, बासी खाना नहीं खाना है, गंदा पानी पीने से बचना है और अधिक तला हुआ भोजन भी हमें बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं कि मौसम के अनुसार हम खान पान में बदलाव कैसे करें।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, ये बातें हमारे आगे भी आपसे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए अंजलि जी हम कार्यक्रम का एक और गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि हमें गर्मियों में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और कैसा भोजन करना है।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि गीत से पहले हमने बरसात में भी किस तरीके का भोजन हम कर सकते हैं उसके बारे में जाना, यही श्रोता साथियों, बरसात में स्वच्छता का विशेष हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि भोजन बनाने से पहले हाथों को हमें धोना है, फल और सब्जियों को अच्छी तरह साफ करना है, पीने का पानी साफ रखना है, भोजन को ढककर रखना है और बाहर का अस्वच्छ भोजन जो होता है वो हमें कम ही खाना होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम सर्दियों के भोजन की बात करें तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सर्दियों के समय हमारा शरीर है वो गर्म रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए हमें पौष्टिक और ऊर्जा देने वाले भोजन का सेवन करना है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि श्रोता साथियों, बाजरा, मक्का, तिल, गुड़, मूंगफली, सूखे मेवे, गाजर, पालक, मेथी और सरसों का साग, साथ ही अदरक और लहसुन का सेवन हम कर सकते हैं। इनका सेवन करेंगे श्रोता साथियों तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इनसे हमें अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि धूप शरीर को विटामिन डी देती है। यदि पौष्टिक भोजन के साथ साथ हम नियमित धूप भी लें तो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल मनीषा, प्रकृति हर मौसम में वही फल और सब्जियां हमें देती है जिसकी उस समय शरीर को आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: इससे हम देखते हैं कि हमारा पोषण स्तर बना रहता है, कम रासायनिक संरक्षण होता है, बेहतर स्वाद हमें मिलता है और सस्ती चीजें हमें उपलब्ध हो पाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसकी अधिक ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है। श्रोता साथियों, अपने क्षेत्र में मिलने वाला भोजन जो होता है वो शरीर के लिए अधिक अनुकूल होता है, इसलिए स्थानीय अनाज, दालें, सब्जियां और फल न केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक होते हैं।
1: जी हाँ।
0: हमें बच्चों को हर मौसम में संतुलित भोजन देना चाहिए। उनके भोजन में हमें दूध, दाल, मौसमी फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और घर का ताजा भोजन शामिल करने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ जैसा कि आपने बच्चों के बारे में बताया, इसी के साथ हमें बुजुर्गों के भोजन की भी सावधानी रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बुजुर्गों का पाचन शक्ति है वो अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए हमें उनको हल्का भोजन देना है, पर्याप्त पानी हमें पिलाना है, अधिक तेल और मसाले वाला भोजन हमें नहीं खिलाना है। मौसम के अनुसार श्रोता साथियों, हमें फल और सब्जियां लेनी है और साथ ही उनको समय पर भोजन देना है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: हर मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, दही, तिल, गुड़ और मौसमी फल का सेवन हमें करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: साथियों, केवल भोजन बदलाव ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव कम करना, समय पर भोजन करना है, पर्याप्त पानी पीना है और स्वच्छता बनाए रखनी है। आज हम देखते हैं मनीषा के फास्ट फूड, पैकेट खाद्य पदार्थ, शीतल पेय का सेवन बढ़ गया है। इससे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। यदि हम फिर से मौसमी और पारंपरिक भोजन अपनाएं तो इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि अगर मौसम परिवर्तन होता है तो हमें अपने भोजन को है वो धीरे धीरे बदलना है। पानी की मात्रा हमें मौसम के अनुसार ही रखनी है साथियों। साथ ही ताजे फल और सब्जियां खाएं, बासी भोजन न करें। साथ ही श्रोता साथियों, आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। शरीर की प्रक्रियाओं को समझे साथियों और उसी के अनुसार आप भोजन चुने।
0: बिल्कुल, कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि यदि हर परिवार मौसम के अनुसार संतुलित भोजन को अगर अपनाएंगे तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इससे बीमारी पर होने वाला खर्च कम होगा और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी। क्योंकि श्रोता साथियों, स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय महंगा भोजन नहीं बल्कि सही मौसम में सही भोजन है।
1: बिल्कुल।
0: प्रकृति हमें हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम प्राकृतिक और संतुलित खान पान अपनाए तो दवाइयों की आवश्यकता भी कम पड़ सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव केवल एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: गर्मियों में ठंडक देने वाला, बरसात में स्वच्छ और हल्का, साथ ही सर्दियों में ऊर्जा देने वाला भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। मौसमी फल, सब्जियां, स्थानीय खाद्य पदार्थ अपनाकर श्रोता साथियों हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए साथियों, प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चले, अपनी थाली को मौसम के अनुसार बदले और साथ ही स्वस्थ जीवन की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो आज जैसा कि कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं कि किस तरीके से मौसम के अनुरूप हमें हमारे खान पान में बदलाव करने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वरामर हित्ता भाई बोनो ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो आपरु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थी गये हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथी मनीषा बोन आज आप भाई बोनो तक की बातचीत नु विषय है की खुश रहवानी कला अपने केम भूलता सही रहा।
0: होवे
1: आपने देखो हो की आज ना टाइम में अपने कने घणा कानी सुविधाएं थी गई है, बेहतर संसाधन है, तेज तकनीकी है, पर एने बावजूद भी घणो मन को एम कहे है की मन खुश नहीं रहतो। तो आखिर आवो केम है? खुशी वास्तव में कम थी गई है या आपने इन्हें ओरखवो भूली गया हो? तासे कार्यक्रम में अन्य विषय माते आपने खाना कानी वाते आपने भाईन बुनों तकी करंगा, पर मारू मन थी रू है कि केम ने कार्यक्रम ने शुरुआत नू पहलू गीत आपने भाईन बुनों ने आपने हमरा विदो।
0: होवे अंजलि बोन तो भाईन बुनो हमड़ा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते।
1: होवे तो भाईन बुनो आप हमर तो रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।